FM 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि तदनुसार।

6 जून सन 2026, सुबह के 5:55 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: मिनट पर आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोता अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे अनुराधा पौडवाल, बाबला मेहता, जगजीत सिंह और साथियों ने। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं महर्षि अरविंद के विचार।
1: भौतिकवाद का मनुष्य को आभार मानना चाहिए, क्योंकि भौतिक दर्शन या भौतिकवाद ने मनुष्य के मन से अंधविश्वास बाहर निकालने में सहायता की है। दूसरी ओर अध्यात्मवाद का भी ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उसने मनुष्य के सांस्कृतिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को संपन्न बनाया है। ये शब्द हैं श्री अरविंद के। श्री अरविंद ने चरम सत्ता यानी सच्चिदानंद की संज्ञा प्रदान की है। उनके अनुसार सच्चिदानंद या ब्रह्म तीन सिद्धांतों से युक्त है। सच्चिदानंद सत जमा चित, शक्ति जमा आनंद का समग्र रूप है। उनके विश्लेषण और विवेचन से ये स्पष्ट है कि सच्चिदानंद पूर्ण सत्ता है, जो अपने अंतर्गत सभी सत्ताओं को समाहित कर लेता है। अरविंद कहते हैं कि सच्चिदानंद जब विश्व की सृजना करता है तो उसका वह रूप अतिमानस है। ब्रह्म का प्रथम रूप सत विशुद्ध है, किंतु दूसरे रूप चित शक्ति में निर्माण की प्रवृत्ति है, और इसी के द्वारा वह यानी सच्चिदानंद विश्व से संपर्क स्थापित करता है। श्री अरविंद ने इसी सर्जना शक्ति से युक्त अतिमानस को सच्चिदानंद तथा विश्व की मध्यस्थ कड़ी माना है। अतिमानस को वो संपूर्ण विश्व में व्याप्त मानते हैं। जीवन के दो पक्ष हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य स्वरूप शरीर तक सीमित है, वो जीता है, और आंतरिक जो जीवन मरण के चक्र में नहीं पड़ता। इस प्रकार मानव के भी दो रूप हैं या दो आत्माएं हैं। प्रथम बाह्य आत्मा जो इच्छा से बंधी रहती है और उसकी सीमा साधारण भावनाओं तक सीमित है। इसका लक्ष्य ज्ञान, शक्ति और आनंद की खोज करना है। दूसरी आंतरिक आत्मा या चैत्य पुरुष है, जो शुद्ध प्रेम, आनंद तथा ज्योति समूह है। श्री अरविंद इसी चैत्य पुरुष को जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। श्री अरविंद के अनुसार योग का उद्देश्य है चरम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करना। योग का उद्देश्य वह अलग अलग भी वर्णित करते हैं। उनका विचार है कि ये दैनिक जीवन की सामूहिक अभिव्यक्ति है, और कभी वो योग को प्रकृति के भीतर और प्रकृतिनिष्ठ क्रिया मानते हैं, जो मात्र प्रकृति जन्य नहीं है, यानी इस शरीर के साथ धरती पर दिव्यता को प्राप्त करना योग दर्शन का लक्ष्य है। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हुए श्री अरविंद का मानना है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है। आप मानते हैं कि ऐसा नियम धरती के मनुष्यों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखने और तदनुसार न्याय करने की दृष्टि से आवश्यक है। श्री अरविंद की प्राचीन दर्शन के कर्म सिद्धांत से अलग मौलिकता यह है कि उन्होंने कर्म सिद्धांत की सीमाओं को अभिव्यक्त किया है। कर्म सिद्धांत यंत्रवादी के रूप में कर्म करता है, जबकि मानव की सत्ता आध्यात्मिक है, यांत्रिक नहीं, और इसीलिए

0: आत्मा कर्म सिद्धांत से ऊपर है।
1: चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महर्षि अरविंद के विचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 मिनट हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार विषय पर देवेंद्र मोहन की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में प्रातः 7:10 पर सुनेगा चर्म रोग और होम्योपैथी चिकित्सा विषय पर वार्ताकार डॉक्टर हरिंद्र सिंह तोमर की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे प्रातः 7:31 पर। नौ पर लोक संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा मनोरमा तिवारी के गायक कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करेंगे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर रहेंगे ज्वाला प्रसाद और नकारा पर हैं ईश्वर सिंह खींची। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर सुनेगा पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन। ग्यारह बजे कार्यक्रम आज के कलाकार में आज के कलाकार रहेंगे फिल्म गीतकार राजेंद्र कृष्ण। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा खाद्यान्न उत्पादन में कीटों का योगदान विश्व कीट दिवस के उपलक्ष्य में। दोपहर 12 आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकमंजरी जिसमें गायक कलाकार रहेंगे दामोदर शर्मा। दोपहर 1:15 पर हमारी ग्रामीण बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम पनघट जिसमें चर्चा का विषय रहेगा स्वयं सहायता समूह और विश्व कीट दिवस। इसी के साथ सुनेगा शशिकला द्विवेदी से वार्ता जिसका विषय रहेगा जल है तो कल है। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा गौरी खन्ना के गाये कुछ गीत और भजन। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर आप सुन सकेंगे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। श्रोता हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 जिसमें 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी जिसमें चर्चा का विषय रहेगा सकुरा साइंस प्रोग्राम। इसी के साथ सुनेगा मेघा राघव से वार्ता जिसका विषय रहेगा विज्ञान केवल एक विषय नहीं जीवन पद्धति है। आइए जाने सेगमेंट में आप सुन सकेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में। शाम 6 सुनेगा ग्रामीण लोक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विषय पर चर्चा और इसी के साथ आप सुन पाएंगे डॉक्टर अशरफ अली खान का आलेख जिसका विषय रहेगा मक्के की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट रोग और उनका प्रबंध। स्वर रहेगा अनिंद्र सिंह का। मजदूर मंडल कार्यक्रम में शाम 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा गर्मी में लू से बचाव और विश्व कीट दिवस। इसी के साथ आप सुन सकेंगे परिवेश के बदलते तरीके विषय पर रिंकू चक्रवर्ती की वार्ता। शाम 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर नवीन शर्मा की वार्ता जिसका विषय रहेगा जीव जंतुओं में भी होती है संवेदना। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं शोभा जोशी और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

कह विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थी शोभा जोशी और संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार विषय पर देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता।
1: हम अपने ग्रामों को देखें, हमें अपने ग्रामों के चारों तरफ तालाबों के स्थान दिखाई देंगे जो ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज वर्षा के जल के संग्रहण के लिए कितने सचेत थे। यही कारण है कि ग्राम की हर दिशा में तालाब मिलेंगे जिनमें वर्षा का जल एकत्रित होता था और भूमिगत जल स्तर अस्थायी रहता था। इन तालाबों के चारों तरफ कुएं बने होते थे जिसमें वर्षा का पानी

वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता था। यही नहीं, इन तालाबों से फसलों की जीवन रक्षक सिंचाई भी की जाती थी और इन तालाबों की प्रतिवर्ष सफाई मकान की मरम्मत के लिए मिट्टी लेने के होती रहती थी। आज वर्तमान में गांव-गांव मकान पक्के बन गए हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि तालाबों की सफाई बंद हो गई और तालाब धीरे धीरे भर गए। इनमें जो पानी रुकता था वह सीधे नदियों में जाने लगा, भूमिगत जलस्तर गिरता गया, कुएं समाप्त हो गए। सरकार ने हैंडपंप लगवाए हैं, उनकी भी यही स्थिति है कि भूमिगत जलस्तर गिरने से प्रतिवर्ष उनको रीबोर करना पड़ता है। हैंडपंप जो 40 फीट पर लगते थे उनकी गहराई 120 से 130 फीट तक हो गई है और जलस्तर निरंतर गिरता ही जा रहा है। प्रतिवर्ष सूखी और कम वर्षा के कारण स्थिति और भी भयानक होती जा रही है। जनपद आगरा के दक्षिणी जनपद आगरा प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी कोने के बीच स्थित है। जनपद की जलवायु राजस्थान के मरुस्थल एवं कर्क रेखा के समीप होने के कारण शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक का शीतकाल में 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जनपद में औसत वार्षिक वर्षा 651 मिलीमीटर है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4.62 लाख हेक्टेयर है, जो 940 ग्रामों में बटा हुआ है। जनपद में भूमि जल के कारण भूमि क्षरण ऊसर का जलमग्न क्षेत्र 2.24 लाख हेक्टेयर है। जनपद की बिहार क्षेत्र जो भूमि की क्षरण क्षमता से ग्रसित है वह 1.4 लाख हेक्टेयर है। यह क्षेत्र यमुना उटंगन व चंबल नदियों के जल समृद्ध क्षेत्र में फैला हुआ है और जनपद के भौगोलिक क्षेत्र का 34.62 प्रतिशत है। बताए गए कारणों से 24.62 प्रतिशत क्षेत्र का संपूर्ण जल बिना किसी रुकावट से अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को लिए हुए नदियों की ओर प्रतिवर्ष चला जाता है, जिससे भूमि की उत्पादकता के साथ साथ भूमिगत जलस्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है और प्रत्येक वर्ष भूमिगत जलस्तर 4 से 6 फीट तक चला जाता है। इसके अतिरिक्त जनपद के बरौली अहिर खंदौली बिजपुरी फतेहपुर सीकरी अकोला एतमादपुर अछिनवा विकासखंड सैलाइन टेली और खारे पानी एवं फ्लोराइड जल की समस्या से ग्रसित हैं और यह पानी पीने के साथ साथ खेती के लिए भी योग्य है। इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि भूमि जल स्तर में वृद्धि की जाए। यह समस्या मुगल काल से लेकर आज तक यथार्थ बनी हुई है, जिस पर अविलंब ध्यान देने की आवश्यकता है। 940 ग्रामों में से 904 ग्राम में ही इस समय आबादी है। 36 गांवों से मानव जनसंख्या का पलायन भी हो चुका है। भूमिगत जल स्तर के निरंतर गिरते रहने के कारण जनपद में के 15 में से 9 विकास खंड डार्क श्रेणी में तथा 6 विकास खंड ग्रे श्रेणी में घोषित हैं। 43.2 प्रतिशत बिहार क्षेत्र का जल तो सीधे नदी में चला ही जाता है, वह अपने साथ साथ ऊपर की भूमि के 7% क्षेत्र के जल को भी साथ ले जाता है। यह आकलन किया गया है कि प्रत्येक वर्ष वर्षा के कारण 16.55 टन प्रति हेक्टर प्रति वर्ष भूमि कट जाती है, जिससे 61% मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाती है तथा 29% नदी की तलहटी में जमा हो जाती है और 10% बड़े बड़े तालाबों या समुद्र में एकत्रित होती है। इस प्रकार का भूमि क्षरण अत्यंत ही विनाशकारी है। यह किसी भी दशा में 4.5 से 6 मैट्रिक टन प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आदर्श स्थिति यह होगी कि यह क्षरण शून्य हो। बिहार क्षेत्र 43.2 प्रतिशत है और यह प्रतिशत प्रदेश में के

0: 12.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र केवल 14% है। जनपद की अधिकतम वर्षा 15 जुलाई से 15 सितंबर के मध्य होती है। भूमि का ढालू एवं बर्फ होने के कारण वर्षा का अधिकतर जल वानस्पतिक या अभियंत्रित अवरोधों के न होने के कारण सीधे नदी में चला जाता है। परिणाम भूमिगत जलस्तर में निरंतर कमी, इन्फिल्ट्रेशन कम होने के कारण भूमि के ऊपरी सतह में नमी का अभाव, नमी के अभाव से वनस्पति का नग्ना और इस उग भी जाए तो उसका नष्ट हो जाना स्वाभाविक है। जनपद के 1985 से लेकर 1994 के बीच 14 विकास खंडों में भूगर्भ जल स्तर मानसून से पूर्व 2.5 मीटर से लेकर 8 मीटर तक गिर चुका है। मानसून के पश्चात भी भूगर्भ जल स्तर में 2 से लेकर 8 मीटर तक है। यह अत्यंत आवश्यक है कि वर्षा के जल को संचित कर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं। शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जल संरक्षण के कार्य कराए जाने पर बल दिया जा रहा है। यह योजनाएं मैक्रोमड योजना, जल निधि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय जलागम विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, भूमि जल संरक्षण की योजनाएं एवं स्वजाधारा योजना है। इन सभी योजनाओं में आप सभी किसान भाइयों की सक्रिय भागीदारी एवं सहभागिता निर्धारित है, जिसमें जल निधि योजना में किसी भी पुराने जल स्रोत के सुधार के लिए आपका अंशदान कुल लागत का न्यूनतम 10% निर्धारित है। मैक्रोमड योजना जो कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत भी आपका सहयोग तालाबों के जीर्णोद्धार में आमंत्रित है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सभी प्राकृतिक संसाधन पानी को संरक्षित कर सूखे एवं पानी की समस्या से छुटकारा पाएं। यदि हम जल का संचय करें, मिट्टी अपने आप संचित हो जाएगी। इन दोनों के संचय पर वनस्पति स्वतः पैदा होगी और यह तीनों मिलकर पर्यावरण को सुधारेंगे, जिसका सीधा प्रभाव प्राणी जगत वनस्पति जीवन पर पड़ेगा। इससे हमें हृदयंगम करना है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में एवं आकाश का पानी ताल में, ताल का पानी पाताल में।
1: कार्यक्रम खेती की बातें में अभी आप सुन रहे थे देवेंद्र मोहन तिवारी की वार्ता, विषय था ग्रामीण तालाबों का जीर्णोद्धार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारम्भं विहितवान्। सः आदौ

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पैदा होते हैं, जैसे फोड़ा फुंसी तथा खाज खुजली इत्यादि। कुछ वायरल टाइप के होते हैं, जैसे हर्पिस आदि। हर्पिस बीमारी में छोटे बड़े आकार के छाले शरीर के आधे हिस्से में एक लाइन में होते हैं। दानों के भीतर पहले पानी जैसा तरल पदार्थ, फिर दूध जैसा तरल पदार्थ भरता है। इसके बाद भीतर का पदार्थ सूखने लगता है तथा अंत में काली पपड़ी सी जमा होने लगती है। हर्पिस 4 प्रकार का होता है। इनमें से हर्पिस जोस्टर बहुत ही तकलीफ देने वाली बीमारी है। इसका दर्द तथा जलन लंबे समय तक रहते हैं। एलर्जिक चर्म रोग कई वजह से हो सकते हैं। कुछ तो खाने पीने वाली वस्तुओं से होते हैं तथा कुछ दवाइयों के रिएक्शन से भी एलर्जी के दाने निकल सकते हैं। कभी कभी सरद गर्म की वजह से भी एलर्जी हो जाती है, जैसे ज्वर पित्ती। ज्वर पित्ती में शरीर पर एक प्रकार के लाल रंग के चकत्ते निकलते हैं। उनमें बहुत खुजली पड़ती है और जलन भी होती है। खुजाने से चकत्ते सूज जाते हैं। ये एक जगह समाप्त होकर दूसरी जगह निकल आते हैं। जटिल प्रकार के चर्म रोगों में एक्जिमा, छाजन, दाद, सोरायसिस तथा मुहासे इत्यादि आते हैं। एक्जिमा या छाजन शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। इसमें सबसे पहले रोग की जगह लाल हो जाती है, फिर वहां छोटे छोटे दाने या चकत्ते निकलते हैं। ये दाने सूखे भी हो सकते हैं और कभी कभी पानी सा भी निकलता है। कभी कभी दाने पक भी जाते हैं तथा उनमें से पस भी निकलता है। दाद या रिंगवॉर्म के चकत्ते शरीर पर कहीं भी निकल सकते हैं। ये ज्यादातर गोल प्रकार के होते हैं और दाद के चकत्ते प्रायः किनारे से बढ़ते हैं। इनमें खुजली तथा जलन विशेष होती है। चर्म रोगों में सोरायसिस की बीमारी सबसे जिद्दी बीमारी है। यह ठीक होने में सबसे ज्यादा समय लेती है। इस बीमारी में त्वचा के ऊपर किसी प्रकार के दाने नहीं निकलते हैं। इस रोग में त्वचा सूखी, सफेद तथा फटी फटी सी हो जाती है तथा मछली की त्वचा की भांति रूसी सी तथा पपड़ी सी दिखाई देती है। इसमें एक तरह के चकत्ते पहले छोटे छोटे आरंभ होकर फिर बड़े हो जाते हैं। सोरायसिस घुटने, कोहनी, हाथ पैरों के तलवे तथा सिर में ज्यादा दिखाई देती है। मुहांसे अथवा पिंपल्स के दाने ज्यादातर जवानी की अवस्था में युवक युवतियों के चेहरे पर निकलते हैं। ये दाने महीन, गांठदार या फिर पकने वाले भी हो सकते हैं। दबाने पर इनके भीतर से एक तरह की कील सी निकलती है। दानों के स्थान पर प्रायः काले दाग से पड़ जाते हैं और त्वचा रफ या खुरदरी हो जाती है। सभी प्रकार के चर्म रोगों में होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही कारगर है। त्वचा संबंधी किसी भी रोग की आरंभिक अवस्था में ही चिकित्सक की सलाह से सही लक्षणों के आधार पर होम्योपैथिक दवाएं दी जाएं तो यथोचित कम समय में ही रोग समूल नष्ट हो जाता है। होम्योपैथी के बारे में एक गलत धारणा लोगों में है कि इस इलाज से बीमारी पहले बढ़ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी रोग, विशेषकर चर्म रोग, यदि किसी इलाज की वजह से दबा हुआ है तो होम्योपैथिक दवाओं के प्रयोग से प्रकट अथवा क्लियर हो जाता है और बिना बाहर निकले कोई भी चर्म रोग जड़ से ठीक नहीं हो सकता है। चर्म रोगों के बारे में एक गलत धारणा यह भी है कि प्रत्येक चर्म रोग छूने से या संपर्क में रहने से फैलता है। कुछ चर्म रोग जैसे खाज, खुजली इत्यादि ऐसे हैं जो छूने से एक दूसरे को हो सकते हैं। बाकी सभी चर्म रोग छूने से या संपर्क से नहीं फैलते हैं। वैसे सावधानी के तौर पर त्वचा के रोगी के कपड़े, साबुन, तौलिया इत्यादि अलग ही रहने चाहिए। त्वचा के रोगी को शरीर की तथा कपड़ों की सफाई भलीभांति रखनी चाहिए तथा खटाई, तेज मसाले एवं बादी की चीजों का परहेज रखना चाहिए।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी चर्म रोग और होम्योपैथी चिकित्सा विषय पर डॉक्टर हरेंद्र सिंह तोमर की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: अपील है कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है।

0: अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मार

0: के नाम महाअभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा, गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कल बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से 2741 करोड़ रुपए की लागत वाली देश की पहली एयर शेड आधारित उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना यूपी कैंप का शुभारम्भ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विश्व बैंक और प्रदेश सरकार के बीच MOU का हस्तांतरण हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री ने लखनऊ की कुकरेल रेंज में पौधरोपण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महर्षि चरक औषधि वन की भी स्थापना की। यहां उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ पौधरोपण लक्ष्य के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम पौधरोपण महाअभियान 2026 की शुरुआत करते हुए इसके लोगों का भी अनावरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचें और पेड़ लगाकर प्रकृति का संरक्षण करने का संकल्प लें।
1: 5 संकल्प हम सबको इस अवसर पर लेने होंगे। एक, हर नागरिक एक पेड़ माँ के नाम पर अवश्य लगाएगा, कम से कम एक पेड़, यह हर नागरिक का दायित्व है। दूसरा, पेड़ लगाना ही नहीं, उसकी सुरक्षा का दायित्व भी लेना है, हर एक ओर से उसे बचाना है। तीसरा, जल संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। चौथा संकल्प होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह रोके, उससे भी हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के साथ हमें वो करना पड़ेगा। और अंतिम जो संकल्प है वह प्रकृति के अनुकूल जीवन शैली को अपनाना।
0: इस अवसर पर श्रावस्ती स्थित गुलरा केन नाला को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किए जाने की भी घोषणा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के अपने 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन बायोयुग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ किया। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गन्ने के मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी की गई है और बायो इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक के इस्तेमाल से न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम होगा।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर में 294 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश की पहचान निवेश और सुरक्षा के माहौल के लिए हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार हर जनपद के समग्र विकास के लिए काम कर रही है।
1: यूपी में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके और बिना थके डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है। अन्नदाता किसानों के चेहरे पे खुशहाली ला रही है। बहन और बेटियों के स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। व्यापारी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से आज हर जनपद विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर

0: नागपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहाताल को देश का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की इस उपलब्धि पर खुशी जताई है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्रभूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इसमें झलकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। श्री योगी ने कहा कि यह उपलब्धि विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट है। लखनऊ में विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री डॉ अरुण कुमार सक्सेना ने सुरहाताल के रामसर साइट बनने का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। वाराणसी में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक का कल समापन हो गया। आखिरी दिन ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत 11 देशों ने भाग लिया। संस्कृति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने बताया कि बैठक में भारत की मूल्यवान धरोहरों को वापस लाने पर चर्चा हुई। इस दौरान विकास और संस्कृति के समन्वय के साथ आगे बढ़ने को लेकर भी मंथन हुआ।
1: हमेशा यही कोशिश रही है सरकार की और स्पेशली संस्कृति मंत्रालय की कि जो हमारे जो भी स्टोलन आर्टिफैक्ट्स हैं या जो स्मगल करके ले गए जाए गए या उसके पहले कॉलोनियल टाइम्स में ले जाए गए उनको कैसे वापस लाया जाए क्योंकि वो हमारी धरोहर, तो उसी के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे डेवलपमेंट और कल्चर साथ साथ हो, विरोधाभास ना हो उसमें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर कल से विशेष अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान के तहत 21 जून तक सभी जनपदों के प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि समाज के प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद स्थापित करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं का निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में वृक्षारोपण कर समेकित जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है।
2: भारतीय जनता पार्टी ने और सरकार ने 5 जून से 21 जून के बीच में कार्यक्रम निर्धारित किया है। एक पेड़ माँ के नाम, यही कहूंगा 12 वर्ष नहीं, इसी तरह 2047 जो उनका सपना है कि 2047 में हमारा विश्व में देश हमारा बहुत आगे रहे, पूरी दुनिया को दिशा दे और आगे बढ़े और गरीबों की सेवा करते रहे।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में अकादमी सम्मान समारोह में वर्ष 2021 से 2024 तक के लिए चयनित कलाकारों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस समारोह में 51 विशिष्ट कलाकारों को संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किए गए। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ जनपदों में तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। पूर्वी जनपदों में बिजली गिरने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम महाभियान का किया शुभारंभ। प्रदेश में 2741 करोड़ रुपए की स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना भी हुई शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में बायोरूप ग्रीन कमांड 2026 का किया शुभारंभ। कहा गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक का इस्तेमाल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बलिया का सुरहाताल प्रदेश का 13वां रामसर साइट घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्धि पर जताई खुशी। और वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक समाप्त। अंतिम दिन ब्रिक्स सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग और आपसी साझेदारी को मजबूत बनाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार। विषय विशेषज्ञों से आवेदन आमंत्रित। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना सिविल सर्विसेज नीट एनडीए एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए प्रोफेशनल विशेषज्ञों की सेवाएं अतिथि व्याख्याताओं के रूप में ले जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक और पात्र विषय विशेषज्ञों से आवेदन मांगे गए हैं। चयनित अतिथि व्याख्याताओं को शासन द्वारा तय मानदेय 2000 प्रति व्याख्यान 90 मिनट के लिए दिया जाएगा।

सप्ताह भर झेलनी पड़ेगी उमस और चुभन भरी गर्मी। लगातार अंधड़ और बारिश के बाद अब बादल थम गए हैं, मानसून दूर है, यानी आने वाले दिनों में गर्मी के साथ चुभन और उमस भरी गर्मी हमें झेलनी होगी। मौसम विभाग ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 6 से 11 जून के बीच बारिश के आसार नहीं है। शुरू में बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बाद में आसमान साफ रहने के आसार हैं। इस दौरान तापमान में मंद गति से बढ़ोतरी होती रहेगी। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तेज धूप निकलने से उमस में बढ़ोतरी होगी, इसे चुभन वाली गर्मी महसूस होगी। बाहर निकलने पर पसीना आएगा। दिन का तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इधर शुक्रवार को सुबह से तेज धूप निकली और बाद में बादल छाए रहे, बारिश के आसार बने, लेकिन कुछ ही देर में आसमान साफ हो गया।

सीबीएसई पूर्व पुनः मूल्यांकन आवेदन अब 7 जून तक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 7 जून कर दी है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब कई छात्रों ने 2 जून को शुरू किए गए सीबीएसई के एक पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं को देखने और सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने में आ रही समस्याओं को लेकर उठाया था। बोर्ड ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, छात्रों के हित में सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है कि 6 जून की मध्य रात्रि

नाम की स्पेलिंग हो जाएगी ठीक, तुरंत बनेगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान लाभार्थियों को अब नाम की स्पेलिंग में गलती जैसी छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी गलतियों का निदान स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम तैयार की है, साथ ही संशोधन के लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है। लाभार्थी के प्रमाण पत्र और जरूरी कागजात देखने के बाद ऐसी गड़बड़ी ठीक कर दी जाएगी। नाम की स्पेलिंग सहित अन्य गड़बड़ी के कारण 80,000 लाभार्थियों के अभी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। जिले में 15 लाख अभ्यर्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। अभी तक 10 लाख लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। करीब 80,000 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके कार्ड सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहे कि उनका सूची में नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि के नाम की स्पेलिंग में अंतर है। सीएमओ ने बताया कि प्रदेश स्तर पर नाम की स्पेलिंग सहित अन्य गड़बड़ी के संशोधन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिससे प्रशिक्षण टीम अभी इसका अवलोकन कर रही है। हर जिले के स्वास्थ्य विभाग की आयुष्मान की टीम को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे जिन लाभार्थियों के नाम की स्पेलिंग जन्मतिथि में अंतर है वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर जांच कराई जाएगी। परिवार के अन्य सदस्यों के नाम लाभार्थियों की सूची में हैं और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड में एक जैसा नाम है तो स्पेलिंग में संशोधन स्थानीय स्तर से कर दिया जाएगा। इससे लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। ये सुविधा जल्द शुरू होने वाली है।

15 जून से शुरू होगा योग सप्ताह। जिला प्रशासन ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी शुरू कर दी है। 15 जून से योग सप्ताह शुरू होगा। इस साल योग दिवस की थीम स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने समीक्षा बैठक की। 15 जून को रैलियां निकाली जाएंगी। 16 जून को रंगोली निबंध सहित अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। 17 जून को ग्राम पंचायतों में योग सत्र होंगे और 18 जून को जेल वृद्धाश्रम सहित अन्य में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। 20 जून को नारी शक्ति के लिए योग विषय पर कार्यक्रम किए जाएंगे।

अब खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। एक सूचना के अनुसार नंद किशोर पुत्र रामचंद्र निवासी शहादत नगर थाना जैंथरा जनपद एटा दिनांक 12 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 33 वर्ष, शरीर सामान्य रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखें काली हैं, कद 5 फुट 7 इंच है। इन्होंने नारंगी रंग की टी शर्ट पहन रखी है। इस पुरुष के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद एटा को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार रेखा देवी पत्नी महेश चंद्र निवासी पठानम थाना राजा का रामपुर जनपद एटा अप्रैल से लापता हैं। इनकी उम्र 28 वर्ष, शरीर पतला रंग गेहुआ, आंख नाक कान औसत, बाल लंबे, कद 5 फुट 2 इंच, चेहरा गोल है। इन्होंने गुलाबी रंग का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद एटा को सूचित करें।

एक अन्य सूचना के अनुसार नीतू पुत्री प्रेमपाल सिंह निवासी ग्राम धुरलई थाना सकीट जनपद एटा उम्र 18 वर्ष मई से लापता हैं। शरीर औसत चेहरा गोल रंग गोरा आंख नाक का औसत है बाल लंबे और कद 5 फुट 2 इंच है। इस युवती के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद एटा को सूचित करें। अंतिम सूचना के अनुसार पत्नी पूजा पत्नी मोहित निवासी श्रृंगार नगर थाना कोतवाली नगर जनपद एटा मई 2024 से लापता हैं। इनकी उम्र 28 वर्ष शरीर औसत चेहरा गोल रंग गेहुआ आंख नाक कान औसत बाल लंबे काले कद 5 फुट 2 इंच इन्होंने साड़ी पहन रखी है। इस महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक जनपद एटा को सूचित करें। खोई हुई व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

जेईई एडवांस में चयनित छात्र काउंसलिंग में ले सकेंगे भाग। सीबीएसई की 12वीं कक्षा के मूल्यांकन को लेकर उठे विवाद और पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया में लग रहे समय के बीच जेईई एडवांस में चयनित छात्रों को बड़ी राहत मिली है। जेईई एडवांस 2026 का आयोजन कराने वाले आईआईटी रुड़की ने शुक्रवार को ऐसे छात्रों को आईआईटी काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी है जिनके 12वीं बोर्ड में फिलहाल निर्धारित पात्रता अंक नहीं आए हैं, लेकिन उन्होंने जेईई एडवांस परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है जो जेईई एडवांस में सफल होने के बावजूद बोर्ड परीक्षा के अंकों को लेकर असमंजस की स्थिति में थे। मौजूदा नियमों के अनुसार आईआईटी में प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों के 12वीं में कम से कम 75% अंक और एससी एसटी और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के 65% अंक होना अनिवार्य है। इसी आधार पर उन्हें प्रवेश के लिए पात्र माना जाता है। हाल के दिनों में सीबीएसई के मूल्यांकन को लेकर बड़ी संख्या में छात्रों ने आपत्तियां दर्ज कराई थी और पुनर्मूल्यांकन के बाद अंकों में बदलाव की संभावना जताई थी। इसी पृष्ठभूमि में आईआईटी रुड़की ने यह विशेष व्यवस्था की है। पात्रता से कम अंक पाने वाले छात्रों को भी काउंसलिंग में हिस्सा मिलेगा और उनकी जेईई एडवांस रैंक के आधार पर सीट आवंटन भी किया जाएगा। हालांकि उनका प्रवेश अस्थायी माना जाएगा। आईआईटी रुड़की ने कहा कि संबंधित छात्रों को 15 जुलाई तक संशोधित अंक तालिका ईमेल के माध्यम से उपलब्ध करानी होगी। यदि संशोधित परिणाम में वे निर्धारित पात्रता अंक हासिल कर लेते हैं तो चौथे राउंड के अंत में रैंक के अनुसार पहले से आवंटित सीट की पुष्टि कर दी जाएगी और उन्हें प्रवेश दे दिया जाएगा।

मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त की हरी घंटी के बाद आईएसबीटी से दौड़ेगी मेट्रो। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की टीम ने आईएसबीटी से बिजली घर चौराहे तक मेट्रो का परीक्षण तेज कर दिया है। 6 किलोमीटर लंबे ट्रैक में मेट्रो को 5 से लेकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलाया जा रहा है। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त एन ने बताया कि हरी झंडी पर आईएसबीटी से जुलाई के पहले सप्ताह में मेट्रो का संचालन शुरू होगा। इससे टीडीआई मॉल फतेहाबाद रोड से आईएसबीटी तक सफर आसान हो जाएगा। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त ने अगले सप्ताह जांच के लिए शहर आने का संदेश दिया। शहर में 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर बन रहा है। 1.5 साल पूर्व टीडीआई मॉल फतेहाबाद रोड से बिजलीघर चौराहे तक मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था। अब 6 किलोमीटर ट्रैक और बनकर तैयार हो चुका है। 2 माह से मेट्रो के परीक्षण भी चल रहे हैं। अब तक हुए सभी परीक्षण

शिक्षकों का जल्द बनेगा कैशलेस चिकित्सा कार्ड। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन और पंजीकरण का परफॉर्मा भी जारी कर दिया गया है। विभागीय आदेश जारी होते ही शिक्षक और कर्मचारी पोर्टल cmtcts.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

लॉन्च हुआ E85 ईंधन पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता मिलेगा नया फ्यूल। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने को बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर E85 फ्यूल को लॉन्च कर दिया है। ये एक उच्च एथेनॉल मिश्रण है जिसे फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये सामान पेट्रोल के मुताबिक 20 रुपए सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी स्थित एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर इस ईंधन को लॉन्च किया। इसकी शुरुआत देश के 48 पंपों से होगी। कहा, सरकार दिसंबर 2026 तक इसे 500 आउटलेट तक और दिसंबर 2027 तक 5000 आउटलेट तक बढ़ाने की योजना बना रही है। E85 में 80 से 75% एथेनॉल और 14 से 19% पेट्रोल होता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ उन फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में किया जा सकता है जो E20 से E100 तक के एथेनॉल मिश्रण पर चल सकती हैं। उन्होंने कहा कि E85 इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार से 2030-31 तक भारत का कुल एथेनॉल मिश्रण स्तर लगभग 26% तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने E85 की कीमत पारंपरिक पेट्रोल से लगभग 20 रुपए प्रति लीटर कम रखी है। इन्हीं सूचनाओं के साथ कार्यक्रम आसपास समाप्त करने के अपने रेडियो साथी प्राची जैन को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेश

0: कीटनाशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323,00,000 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभोगियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना।

0: है अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: Partnership that we have with Nepal.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
6: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
7: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
8: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
1: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम

0: विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोईकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोईकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Keralam until June 9th. and Indian grandmaster R. Pragyanan's cribs history becomes first Indian to win Norway chess title.

0: सरकारी सरकारी तमकसुकात के लिए सरमायाकारी की हद साल की पहली छमाही के लिए 4,62,490 करोड़ रुपये पर और साल की दूसरी छमाही के लिए 4,77,600 करोड़ रुपये तय कर दी है। रियासती सरकारी तमकसात के लिए जवाबी हदूद 1,53,043 करोड़ रुपये और 1,64,242 करोड़ रुपये बितरतीब मुकर्रर किए हैं। ये ताज़ा हिदायत फौरी तौर से लागू हो गई हैं। मुंबई से अंकिता आप्टे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: ज़िराअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने कहा है कि मुल्क में 9,42,000 से ज्यादा किसान जून के महीने तक खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं, जिसकी वजह से कीमियावी खादों के मुतवाजन इस्तेमाल की यह मुहिम एक मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई है। इस मुहिम का आगाज ज़िराअत

0: वायनाड में कल भी रेड अलर्ट बरकरार रहेगा। शतरंज के ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर तारीख रकम की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कैमर आखिरी मरहले में हराकर ये जीत हासिल की है। नॉर्वे शतरंज के मुकाबले में सिर्फ दूसरी बार हिस्सा लेने वाले प्रज्ञानंद ने इस मुकाबले का बेहतरीन अंदाज में इख्तिताम किया है। इन मुकाबलों के दौरान उन्होंने आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दो मरतबा हराया है। गोवा के शहर मरगांव में जारी सैफ फुटबॉल खवातीन चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इससे पहले सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा है। भारत अब तक 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने गुजरात के शहर सूरत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के एक अवामी रैली से खिताब को अपनी शह सुर्खी बनाया है। इस सिलसिले में अखबार की शह सुर्खी है, भारतीय मईशत की बुनियाद गैर मामूली तौर पर मजबूत है और आलमी सतह पर इकतसादी बहरान के बावजूद मुल्क में माली साल 2025-26 के दौरान 7.7% की जबरदस्त शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, दिल्ली में 18 नमो पार्कों की शुरुआत, इसी साल लगेंगे 15 लाख पौधे। अखबार इंकलाब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के इस बयान को नुमाया किया है कि इंसानियत और इंसाफ के सामने AI सबसे बड़ा चैलेंज, मसनूई जहानत की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल पर जोर। अखबारात ने सनअती हल्के के इस रद्दअमल को अहमियत दी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एरानात सरमायाकारी बढ़ाने वाले। इसके अलावा अखबारात ने मीनाक्षी मदन राय की पटना हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लेने की खबर को भी सफे अव्वल पर जगह दी है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीय मईशत आलमी इकतसादी बहरान के बावजूद गैर मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रगिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिए फैलाने के मकसद से अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

तनाउल्ला जहीर साहब फरमाते हैं कि अभी तो ये दरो दीवार जानते हैं मुझे, अभी तो मैं नहीं निकला मकान के अंदर से। जहीर पार उतरने का फैसला जो किया, किनारा मिल गया आबे रवां के अंदर से। इस खूबसूरत शेर के साथ शुरुआत म्यूजिकल दिल्ली की, 8:46 और 12 सेकंड। ये है आकाशवाणी FM गोल्ड और मैं हूँ सुनीता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एलओसी कारगिल का ये गीत, जिसे आवाज दी थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना को सरबद्ध किया था अनु मलिक ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म लगान का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिधि ने। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम मनमोहन वारिस के स्वर में फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का ये गीत। गीत के बोल थे समीर के और संगीत था एआर रहमान का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में फिल्म फना से। प्रसून जोशी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है जतिन ललित ने।

श्रोता, इस गीत के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फिरोजाबाद और जौनपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का।
1: फिरोजाबाद में जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर बदबू सारंग के मार्गदर्शन में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चिकित्सकों ने तंबाकू के सेवन से होने वाली गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और लोगों को इससे दूर रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राधिकरण की सचिव सुश्री योगेश शिवा ने जोर देकर कहा है कि नशे की लत न केवल इंसान के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि उसके परिवार, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जीवन को भी बुरी तरह से प्रभावित करती है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। फिरोजाबाद के विकास भवन सभागार में माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के जनपद स्तरीय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस गौरवमयी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष ससीजा, मेयर कामनी राठौर और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मी नारायण यादव के साथ प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी शत्रुघ्न वैश एवं अपर जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता ने मेधावियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। समारोह में जिले के टॉप 10 में स्थान पाने वाले

0: छात्र छात्राओं को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया गया। फिरोजाबाद में शासन के निर्देशों पर 1 जून से 30 जून 2026 तक भूमि विवादों के पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए एक विभिन्न का अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार पिछले एक वर्ष में आए एक भूमि विवाद को दोबारा खोला गया, जिसके निस्तारण से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं थे। इनमें जसराना, फिरोजाबाद, शुकावास, सिरसागंज और टूंडला के मामले शामिल हैं, जिन्हें पुनः स्थलीय सत्यापन के लिए उप जिलाधिकारियों को पोर्टल पर भेज दिया गया है। अभियान के तहत केवल कागजी कार्रवाई न करके राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर जाकर साक्ष्यों के आधार पर अवैध कब्जे हटाने, पट्टे राजस्व अभिलेखों में सुधार, रास्ता, पैमाइश व वरासत से जुड़े विवादों का स्थायी समाधान करेंगी। साथ ही प्रत्येक सप्ताह विकास खंड स्तर पर न्याय पंचायत वार ग्राम पंचायतों में भी आयोजित की जाएंगी। फिरोजाबाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिले के स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रभावित चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, स्वास्थ्य केंद्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और बेहतर काम करने वाले कर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। मौसम विभाग की हीट वेव अलर्ट को देखते हुए उन्होंने सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कूलर, ORS, घोल और ठंडे पानी से युक्त कूलिंग सेंटर सक्रिय करने तथा सरकारी डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने पर पूरी तरह से रोक लगाकर फार्मेस्ट काउंटर पर दवाओं की सूची प्रदर्शित करने के कलेक्टर निर्देश दिए हैं। फिरोजाबाद में पर्यटन विकास को गति देने के उद्देश्य जिलाधिकारी ने 2 महत्वपूर्ण पर्यटक गए स्थलों का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी सबसे पहले सिरसागंज में 24.24 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन आर संस्कृत संकुल पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीपर्पज हॉल में सुव्यवस्थित स्टेज बनाने और भवन की मजबूती व तकनीकी सटीकता सुनिश्चित करने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्था के इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
1: फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं जौनपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राहुल यादव का।
2: जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का कार्यक्रम जौनपुर में सामूहिक आयोजन कर सुना गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक ने कहा कि जनपद के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक व अस्मरणीय क्षण बन गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सीधे जौनपुर से लाइव जुड़े। राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ने और जौनपुर का मान बढ़ाने के लिए वह उनका धन्यवाद करते हैं। जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत प्रेरणादायक व गौरवपूर्ण है। इससे स्थानीय स्तर पर विकास, सांस्कृतिक और जन भागीदारी एक नई ऊर्जा मिलेगी। जौनपुर के जिलाधिकारी सैमुअल पाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में जन समस्याओं को त्वरित व प्रभावी निस्तारण तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड महाराजगंज के ग्राम पंचायत बिरवा में मुख्य विकास अधिकारी धू खड़िया की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जन चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं एवं शिकायतों का गंभीरता सुना गया तथा उनके गुणवत्तापूर्ण और संबंधपूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कि शासन की मंशा का अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तथा योजनाओं को लाभ पहुंचाना तथा ग्रामीण की समस्या को स्थानीय स्तर पर प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। शासन स्तर पर विभिन्न कोर्ट से लंबित वादों के लिए निस्तारण के आधार पर मई की रैंकिंग जारी की गई। मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अवस्थ ने कहा कि शासन स्तर पर जारी रैंकिंग में जनपद को प्रदेश में पहला स्थान मिला। यहां 5 कोर्ट मिलकर कुल 250 वादों को कम से कम निस्तारण करने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष सभी 5 कोर्ट से कुल 466 वादों का निस्तारण किया गया, जबकि मैनपुरी में 407 वाद हल किए गए, जबकि तीसरा स्थान पर आजमगढ़ जनपद रहा जहां 418, बलिया में 147, गाजीपुर में 160, मऊ जनपद को अलग अलग कोर्ट में कुल 187 वाद निस्तारित किए गए। जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के सदिरंगन गांव में 33/11 KVA क्षमता के विद्युत उपकेंद्र का निर्माण कराया जाएगा। इससे 7.92 करोड़ खर्च किया जाएगा, जिसकी स्वीकृति शासन की ओर से मिल गई। नए उपकेंद्र बनने से 50 गांव और 21,000 से अधिक उपभोक्ताओं को निर्विरोध निर्बाध बिजली की मिलेगी। वर्तमान में सदिरंगन के आसपास के क्षेत्रों के रामपुर पावर हाउस से बिजली आपूर्ति की जाती है। इससे उपकेंद्र पर लोड अधिक होने से बिजली ट्रिपिंग फॉल्ट और लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता परेशान थे। इसके मद्देनजर अपना दल के विधायक मड़ियाओं के विधायक डॉक्टर आर के पटेल ने नए उपकेंद्र निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा था, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। रामपुर के सदरनगंज में 33/11 केवी का उपकेंद्र बनने के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया। इसके निर्माण में 7,92,00,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीणों का कहना कि इसके बिजली आपूर्ति स्थिरता आएगी और क्षेत्रीय

0: विकास में गति मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया गया। कोई भी किसान निर्धारित अवधि में ई केवाईसी नहीं करता तो किस्त अस्थायी रूप से रोक दी जाएगी। ऐसे किसान जिन्होंने 2025 से मार्च 2026 के बीच पीएम किसान योजना में ई केवाईसी नहीं कराई है, वह 30 जून के पूर्व अपनी ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें, जिससे योजना को आगामी किस्त प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। जानकारी देते हुए उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रसार डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि ई केवाईसी पूरे होने के बाद ही किस्त जारी की जाएगी। किसान घर बैठे स्वयं फैक्सियल ई केवाईसी कर सकते हैं। उप परियोजना निदेशक आत्मा कृषि प्रभार ने बताया कि योजना का अधिक पारदर्शी, प्रभावी, वास्तविक पात्र किसानों को सीमित रखने के उद्देश्य से वार्षिक ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई। पीएम किसान मोबाइल ऐप से किसान घर बैठे अपने स्वयं फैक्सियल ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान निकटतम जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक ई केवाईसी भी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड व आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यकता होगी। जौनपुर के निगोह से जरौना तक जाने वाली 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण के लिए मछलीसर से सभा विधायक रागनी सोनकर ने भूमि पूजन किया। विधायक ने कहा कि लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग की जा रही थी। सड़क सक्रिय और जर्जर होने के कारण राहगीरों को आवागमन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह सड़क 5.5 किलोमीटर चौड़ी होगी। सड़क किनारे के पूर्ण होने के बाद निगोह, जरौना सहित आसपास के कई गांवों के लोगों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ क्षेत्र के व्यापार और विकास में गति मिलने की उम्मीद है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा।

0: कर पाया तो इतना याद रख जालिम, तेरे बाबा की बाबा की बाबा की तेरे बाबा की महफिल में मैं भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा, भूख हड़ताल कर दूंगा।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे और आशा भोंसले को फिल्म हसीना मान जाएगी में। कल्याण जी आनंद जी के संगीत में इस गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और साथियों ने। गीत की बोल है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को फिल्म हंसते जख्म में कैफी आजमी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था मदन मोहन ने। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मनोरमा तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर है रामतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर है ईश्वर सिंह खींची।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मनोरमा तिवारी के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत कर रहे थे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर थे राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नकारा पर थे ईश्वर सिंह खींची। इसी के साथ लोक संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मुझे वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जैस्मिन सैंटलस और सतिंदर सरताज के स्वर में फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ये गीत। संगीत था शाश्वत सचदेव का।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभय जोधपुरकर को फिल्म जीरो में। संगीत था अजय अतुल का।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बंटी और बबली का एक गीत, जिसे गाया था सोनू निगम और लक्ष्मी महालक्ष्मी अय्यर ने। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला था शंकर एहसान लॉय ने। इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन। इसी के साथ हमारे ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: फोन नहीं आए लेकिन मैंने वाइब्रेट

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त करिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस लोकप्रिय गीतकार को, जिनकी लेखनी ने कई दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया, राजेंद्र कृष्ण। उनका जन्म 6 जून 1919 को जलालपुर जट्टा पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। बचपन से ही उन्हें कविता, साहित्य और भाषा से गहरा लगाव था। यही लगाव आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बना। उनके गीतों में एक खास अपनापन था, जैसे कोई बात सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच रही हो। यही कारण है कि उनके लिखे गीत आज भी पुराने नहीं लगते, बल्कि हर दौर के श्रोताओं को उतने ही अपने लगते हैं।

0: दोस्तों, फिल्मी दुनिया में आने से पहले राजेंद्र कृष्ण शिमला में नगर पालिका कार्यालय में काम करते थे, लेकिन उनके भीतर का रचनाकार उन्हें हमेशा शब्दों की दुनिया की ओर खींचता रहा। वे कविता लिखते थे, साहित्य पढ़ते थे और अपनी भावनाओं को सहज शब्दों में ढालते रहते थे। 1940 के दशक में वे मुंबई पहुंचे और यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। शुरुआती दौर में उन्होंने संघर्ष भी किया, लेकिन उनकी प्रतिभा ने जल्दी ही फिल्म जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। उनकी शुरुआती फिल्मों में आज की रात, बड़ी बहन और लाहौर जैसी फिल्में उल्लेखनीय रहीं। इसी दौर से उनका नाम उन गीतकारों में गिना जाने लगा जो सरल भाषा में गहरी भावनाएं व्यक्त करने की कला जानते थे।
1: न झटको जुल्फ से

दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण केवल गीतकार ही नहीं थे, बल्कि एक सफल संवाद लेखक और पटकथा लेखक भी थे। उन्होंने प्रेम, विरह, भक्ति, हास्य, दर्शन और पारिवारिक संवेदनाओं पर ऐसी रचनाएं की जो आम लोगों के जीवन से जुड़ती थी। उनके गीतों की खूबसूरती ये थी कि वे कठिन शब्दों का सहारा नहीं लेते थे, फिर भी असर बहुत गहरा छोड़ते थे। ये जिंदगी उसी की है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, और तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, जैसे गीत उनकी संवेदनशील और भावपूर्ण लेखनी की मिसाल है। इन गीतों में प्रेम भी है, समर्पण भी, विरह भी और जीवन की सच्चाई भी। और आइए अब सुनते हैं इनकी लेखनी का एक और प्यारा सा मोती।

दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण के करियर में कई बड़े संगीतकारों के साथ उनका शानदार रचनात्मक संबंध रहा। सी रामचंद्र, मदन मोहन, हेमंत कुमार, रवि और कल्याण जी, आनंद जी जैसे संगीतकारों के साथ उन्होंने अनेक यादगार गीत किए। राजेंद्र कृष्ण की लेखनी में भावों की बहुत सुंदर विविधता दिखाई देती थी। एक ओर वे पल पल दिल के पास जैसा दिल को छू लेने वाला प्रेम गीत लिखते हैं, तो दूसरी ओर मेरे सामने वाली खिड़की में और एक चतुर नार जैसे हल्के फुल्के चुलबुले और मनोरंजक गीतों से श्रोताओं के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। यही बहुमुखी प्रतिभा उन्हें अपने समय के सबसे लोकप्रिय गीतकारों में शामिल करती है।

ಯಕ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಳೆಗನ.

निजी जीवन की बात करें तो राजेंद्र कृष्ण बहुत सरल, शांत और कम प्रचार पसंद करने वाले व्यक्ति माने जाते थे। वे अपनी प्रसिद्धि से ज्यादा अपने काम को महत्व देते थे। उनके परिवार में बेटे राजीव और राजेश दुग्गल तथा बेटी प्यारी का उल्लेख मिलता है। राजेंद्र जी उन रचनाकारों में से थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा को अमूल्य योगदान दिया। उनकी विनम्रता और संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व के साथ साथ उनकी रचनाओं में भी साफ झलकती है। शायद यही वजह है कि उनके गीतों में बनावट नहीं बल्कि सच्चाई महसूस होती है। वे आम इंसान की भावनाओं को बहुत करीब से समझते थे और उन्हें गीतों में बहुत खूबसूरती से पिरो देते थे।

दोस्तों, राजेंद्र कृष्ण को उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए खूब सम्मान मिला। फिल्म खानदान के गीत तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरे पूजा के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 सितंबर 1987 को मुंबई में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी जीवित हैं। उनके लिखे गीत आज भी रेडियो पर बजते हैं, तो श्रोता अपने बीते दिनों, अपने रिश्तों और अपनी यादों से जुड़ जाते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके शब्द आज भी संगीत की धुनों में मुस्कुराते हैं, यादों में बसते हैं और दिलों को छू जाते हैं। राजेंद्र कृष्ण को हमारा विनम्र नमन। और अब मैं, यानी आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाह, के लेती हूँ आपसे विदा और छोड़ी जाती हूँ आपको इस प्यारे से गीत के साथ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम जब कीट शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत फसल खराब करने वाले कीड़े, मच्छर, दीमक या टिड्डी जैसे नाम आते हैं। हमें लगता है कि कीट यानी नुकसान, लेकिन प्रकृति की दुनिया इतनी सीधी और एक तरफा नहीं है। प्रकृति में हर जीव की कोई ना कोई भूमिका होती ही है। कोई मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, कोई फूलों का परागण करता है, कोई हानिकारक कीटों को नियंत्रित करता है और कोई प्राकृतिक संतुलन बनाए रखता है। खेत केवल किसान, बीज, पानी और धूप से नहीं बनते। खेतों में एक अदृश्य दुनिया भी बसती है, छोटे छोटे कीटों और जीवों की दुनिया। यही दुनिया हमारी थाली तक अन्न पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, फल और बीज उत्पादन के पीछे प्रकृति का यह मौन सहयोग हमेशा काम करता रहता है। आज का कार्यक्रम इसी बात को समझने की एक कोशिश है कि कीट केवल समस्या नहीं है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में कई बार सहयोगी भी होते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं धरती, अन्न और किसान के सम्मान से जुड़े एक अमर गीत के साथ।

सच ये तो है दोस्तों, हमारे देश की धरती सोना उगलती है, लेकिन इस सोने को उपजाने में किसान के साथ साथ प्रकृति के अनगिनत साथी भी लगे रहते हैं। कीटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है परागण यानी पॉलिनेशन। मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे और

सच ये तो है दोस्तों, हमारे देश की धरती सोना उगलती है, लेकिन इस सोने को उपजाने में किसान के साथ साथ प्रकृति के अनगिनत साथी भी लगे रहते हैं। कीटों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है परागण यानी पॉलिनेशन। मधुमक्खियां, तितलियां, भंवरे और कई अन्य कीट फूलों पर बैठते हैं। वे फूलों के रस लेते हैं और अनजाने में परागकण एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा देते हैं। इसी प्रक्रिया से फल, बीज और कई फसलें बनती हैं। हम अक्सर मधुमक्खियों को केवल शहद से जोड़ते हैं, लेकिन मधुमक्खियां हमारी खेती के लिए बहुत बड़ी सहायक हैं। फलदार पेड़, सब्जियां, तिलहन, दलहन और कई प्रकार की फसलें परागण पर निर्भर होती हैं। अगर परागण करने वाले कीट कम हो जाए तो फसल की मात्रा भी घट सकती है और गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। सोचिए, आम के बौर, सरसों के पीले फूल, लौकी कद्दू की बेलें, टमाटर, बैंगन, मिर्च और कई फल सब्जियां, इन सब के पीछे छोटे छोटे परागण करने वाले कीटों की मेहनत छिपी होती है। वे ना ढोल बजाते हैं, ना कोई घोषणा करते हैं, बस अपना काम करते रहते हैं, जिनका काम बहुत बड़ा होता है। प्रकृति की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर छोटा जीव किसी बड़े काम से जुड़ा होता है। खेत में फूल खिलते हैं, कीट आते हैं, परागण होता है, फल बनते हैं, बीज तैयार होते हैं और अंत में हमारी थाली सजती है। इसी प्राकृतिक सुंदरता और रचना की अद्भुत कला को याद करते हुए आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, कीटों का बहुत बड़ा योगदान है मिट्टी को उपजाऊ बनाना। हम अक्सर खेत की मिट्टी को बस मिट्टी समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में मिट्टी एक जीवित संसार है। उसमें सूक्ष्म जीव, केचुए, चींटियां, भृंग और कई प्रकार के कीट मौजूद होते हैं। ये सूखी पत्तियां, फसल और अवशेषों और जैविक पदार्थों को तोड़कर मिट्टी में मिलाते हैं। जब पत्तियां सड़ती हैं, जैविक पदार्थ मिट्टी में मिलते हैं, तब मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ते हैं। इससे फसल को भोजन मिलता है। मिट्टी में रहने वाले कीट छोटे छोटे रास्ते बनाते हैं, जिससे हवा और पानी अंदर तक पहुंचते हैं। इससे जड़ें बेहतर बढ़ती हैं और पौधे मजबूत बनते हैं। स्वस्थ मिट्टी का मतलब केवल रासायनिक खाद डालना नहीं, स्वस्थ मिट्टी का मतलब है उसमें जीवन होना। जहां मिट्टी में जैव विविधता होती है, वहां फसलें अधिक संतुलित और मजबूत होती हैं। कई बार किसान खेत में फसल के अवशेष जला देते हैं, इससे मिट्टी में रहने वाले उपयोगी जीव भी नष्ट हो जाते हैं। यदि हम जैविक पदार्थों को सही तरीके से मिट्टी में लौटाएं, तो मिट्टी की शक्ति बढ़ती है। कीट और सूक्ष्म जीव इसी चक्र को पूरा करने में मदद करते हैं। ये प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। जो पत्ते गिरते हैं, जो अवशेष बचते हैं, वे बेकार नहीं होते। कीट उन्हें फिर से मिट्टी का भोजन बना देते हैं और वही मिट्टी अगली फसल को जीवन देती है। मिट्टी से पौधा, पौधे से अन्न और अन्न से जीवन, यही तो है जीवन का एक सुंदर और सुहाना सफर।

दोस्तों, अब बात करते हैं उन कीटों की जिन्हें हम किसान का मित्र कह सकते हैं। खेतों में कुछ कीट ऐसे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को खा जाते हैं या उन्हें नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए लेडी बर्ड बीटल यानी सोन पंखी कीट माहू जैसे हानिकारक कीटों को खाता है। कुछ परजीवी ततैया फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के अंडों या लार्वा को नियंत्रित करती हैं। मकड़ियां भी खेत में कई छोटे कीटों को पकड़कर उनकी संख्या संतुलित रखती हैं। इसका मतलब ये है कि खेत में हर कीट को देखकर घबराना नहीं चाहिए। हर कीट नुकसानदेह नहीं होता। कुछ कीट फसल के रक्षक भी होते हैं। यदि हम बिना समझे बहुत अधिक रासायनिक छिड़काव करते हैं तो हानिकारक कीटों के साथ साथ ये मित्र कीट भी मर जाते हैं। इसके बाद खेत का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। यही कारण है कि आज खेती में समेकित कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाती है। इसमें खेत की नियमित निगरानी, कीटों की सही पहचान, जैविक उपाय, फेरोमोन ट्रैप, प्रकाश ट्रैप, नीम आधारित उत्पाद और जरूरत पड़ने पर ही सुरक्षित कीटनाशक का उपयोग शामिल है। किसान अगर समय समय पर खेत का निरीक्षण करें, पत्तियों के नीचे देखें, फूल और तने की स्थिति देखें तो कीटों की पहचान जल्दी हो सकती है। इससे समय पर नियंत्रण आसान हो जाता है। साथ ही मित्र कीटों को बचाकर प्राकृतिक संतुलन भी बनाए रखा जा सकता है। सही कीट प्रबंधन का मतलब है फसल भी सुरक्षित रहे, किसान का खर्च भी कम हो, भोजन भी सुरक्षित रहे और पर्यावरण भी बचा रहे। तो अब एक गीत सुनते हैं किसान की मेहनत, संघर्ष और उम्मीद को सलाम करते हुए।

दोस्तों, अब एक बहुत ज़रूरी बात। कीटों का योगदान जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही ज़रूरी ये समझना है कि कुछ कीट सचमुच फसल के लिए हानिकारक भी होते हैं। टिड्डी दल, फल मक्खी, माहू, सफ़ेद मक्खी, तना छेदक, पत्ती लपेटक और कई प्रकार के कीट फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये पत्तियां खा जाते हैं, रस चूसते हैं, तनों में छेद करते हैं या फलों को खराब कर देते हैं। यदि इनका नियंत्रण समय पर ना किया जाए तो खाद्यान्न उत्पादन घट सकता है, किसान को आर्थिक नुकसान हो सकता है और बाजार में खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए कीटों को लेकर संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। फूलदार पौधे खेतों के आसपास होंगे तो मधुमक्खियां और तितलियां आएंगी। जैविक पदार्थ मिट्टी में रहेगा तो मिट्टी में जीवन रहेगा। खेत में विविधता रहेगी तो एक ही प्रकार के कीट का प्रकोप कम हो सकता है। यही खेती का नया संदेश है, केवल उत्पादन नहीं बल्कि संतुलित और सुरक्षित उत्पादन। विश्व कीट दिवस हमें यही संदेश देता है कि मित्र कीटों को बचाया जाए, अंधाधुंध कीटनाशकों से बचा जाए और फसल सुरक्षा में वैज्ञानिक सोच अपनाई जाए। और अब अपने रेडियो दोस्त करीमा शाके को दीजिए इजाजत और आप लीजिए आनंद इस गीत का।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, दोपहर के 12 बजने को है, समय है कार्यक्रम लोक मंजरी का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं दामोदर शर्मा की आवाज में कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म साया से उदित नारायण की आवाज में, सईद कादरी के बोल थे अनु मलिक के धुन। अगला गीत है फिल्म मैं हूना से, वसुंधरा दास और के युगल स्वर है। जावेद अख्तर की लेखनी को संगीत में ढाला है अनु मलिक ने।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: कार्यक्रम नए तराने को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान को फिल्म चमेली में। संदेश चांडिल्य की धुन पर बोल है इरशाद कामिल के।

डोमिनिक सरेजा की आवाज में ये गीत था फिल्म रॉक ऑन से। जावेद अख्तर के बोल थे शंकर एहसान लॉय की धुन। कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत है फिल्म हॉन्टेड से टीआर वाजपेयी की आवाज में। जुनैद वैसी की शब्द रचना है, चिरंतन भट्ट की संगीत रचना।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमांड जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा, दशहरी और

0: के रुकन ममालिक के नुमाइंदों ने सकाफती ताउन और बाहिमी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। हिंदुस्तान की सदारत में होने वाली इस अहम मीटिंग में ब्राजील, रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका और सऊदी अरब समेत 11 ममालिक ने शिरकत की। सकाफत की वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी अमिता प्रसाद सरभाई ने कहा कि मीटिंग में हिंदुस्तान के कीमती विरसे की वापसी पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान तरक्की और सकाफत के मुतफा तफहम के साथ आगे बढ़ने के तौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। बलिया के जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुराताल को मुल्क के सवा रामसर साइट करार दिया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये मुल्क के कुदरती माहौल, खासतौर पर उसकी आबी जमीन के तहफ्फुज़ के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने माहौलियाती तहफ्फुज़, हयातती तनु के तहफ्फुज़ और वेटलैंड के तहफ्फुज़ के शोबों में काबिल जिक्र तरक्की की है। मुजफ्फरनगर जिले के छपर थाना इलाके में दिल्ली देहरादून कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद ट्रक से टकरा गए, मौके पर ही हलाक हो गए। आंसू वाकये के बाद पुलिस और इंतजामी अहलकार जाए वकूफ पर पहुंचे। पुलिस सुपरिंटेंडेंट संजय कुमार ने कहा कि मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाके की खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है हमारे ग्रामीण बहनों के कार्यक्रम पनघट का।

कार्यक्रम पनघट सुनने वाली मेरी सभी बहनों को सोमा जैन की राम राम। और बताएं बहनों, आप सब कैसी हैं? कैसा रहा बीता सप्ताह? वैसे अभी तो बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में घर में धमाचौकड़ी मची हुई होगी, है ना? बहन बेटियों के आने से घर में रौनक भी होगी। सच, घर में बहन बेटियां आती हैं तो घर का माहौल कितना खुशनुमा हो जाता है। बस ज़रूरत होती है रिश्तों में प्यार और थोड़ी सी समझदारी की। वैसे घर में कोई भी मेहमान आए तो खर्चा यानी घर का बजट तो बढ़ ही जाता है। ऐसे में अगर आमदनी का एक और साधन हो तो बड़ी मदद होती है। तभी तो हम आपसे कहते हैं कि स्वयं की मदद करो, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर। मैनो, हम सभी ग्रामीण महिलाएं हैं जो घर संभालती हैं, खेती किसानी में हाथ बटाती हैं, पशुपालन करती हैं, और इसके साथ साथ हम सब एक सपना भी देखती हैं अपने छोटे से व्यवसाय यानी कि अपने छोटे से काम का, जिससे हम खुद की आमदनी भी पा सके, आत्मनिर्भर बन सके। सोचो उस पल की खुशी जब घर में किसी भी कारण पैसे की अचानक से ज़रूरत पड़ जाए और तब आप अपने घर वालों के सामने आगे बढ़कर ये कहें कि मेरे पास है ना बचत के रुपए, मैं दे देती हूँ। ऐसे में सबको आपके ऊपर गर्व होगा और आपका आत्मसम्मान उसको बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव होगा। कितना अच्छा लगेगा खुद को, ज़रा सोचो। ये सुख पाने के लिए ज़रूरत है काम करने की, स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़कर आगे बढ़ने की। बहनों, स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं का एक छोटा सा समूह होता है जो नियमित रूप से मिलकर बचत और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की आर्थिक मदद करता है। छोटी बचत का बड़ा बदलाव, यही स्वयं सहायता समूह का मूल मंत्र है। हर सदस्य हर महीने या हर सप्ताह कुछ राशि जमा करती हैं। ये राशि मिलकर एक फंड बन जाती है

इसका उपयोग समूह की सदस्य जरूरत पड़ने पर ऋण के रूप में कर सकती हैं। बहनों, कई बार हम सोचते हैं कि 50 या 100 रुपए की बचत से भला क्या होगा, लेकिन जरा सोचो, यदि 15 महिलाएं हम जैसी बहनें जो हैं वो हर महीने 100 रुपए बचाएं, तो एक महीने में 1500 रुपए हुए ना। ऐसे में एक साल में 18,000 रुपए होते हैं, और यदि बैंक सहायता और सरकारी योजनाएं भी जुड़ जाए तो ये राशि और बढ़ सकती है। यही छोटी बचत बड़े सपनों को पूरा करने का हमारा माध्यम बनती है। जब समूह नियमित रूप से बचत और बैठकों का संचालन करता है तो बैंक उस पर विश्वास भी करता है। इसके बाद समूह को बैंक से ऋण मिल सकता है, और तब बहनों इस ऋण का उपयोग कर सकती हैं आप सब और खुद का काम शुरू कर सकती हैं। बहुत सारे काम हैं जिन्हें आप शुरू करती हैं कर सकती हैं, उसमें पशुपालन, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, किराना दुकान, मसाला निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, पापड़ और अचार उद्योग, सब्जी उत्पादन, फूलों की खेती जैसे अनेक काम हैं जिन्हें आप अपनी रुचि के हिसाब से चुनकर उसका व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। वैसे बहनों, अब तो केवल पारंपरिक व्यवसाय ही नहीं बल्कि नए अवसर भी हमारे लिए उपलब्ध है, जैसे मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती, मिलेट उत्पादन, हाथों से निर्मित सामान की ऑनलाइन बिक्री। भाई, इसकी बहुत मांग है विदेशों में, देश में, तो ये भी एक काम है जो आप जैसी बहनें हाथों से सामान बना रही हो, आप उसकी ऑनलाइन बिक्री ही शुरू कर दें। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनसे स्वयं सहायता समूह अच्छा लाभ कमा सकता है। एक मजबूत समूह को कई योजनाओं से सहायता मिल सकती है, जैसे बैंक ऋण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वरोजगार योजना, प्रदर्शनी और मेले। तभी तो कहते हैं कि समूह में सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, अपने समूह की मजबूत पहचान बनिए, नियमित बैठक करें, समय पर बचत करें, सही लेखा जोखा रखें, सभी सदस्यों को बराबर का अवसर दें, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कोई पीछे छोड़ जाए। प्यारी बहनों, स्वयं सहायता समूह केवल एक संगठन नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर की एक यात्रा है। जब महिलाएं एकजुट होती हैं, बचत करती हैं, सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं, तब पूरा गांव विकसित होता है। जब हम अपनी बहनों को सशक्त होता देखते हैं तो एक परिवार मजबूत होता है, और जब हजारों परिवार सशक्त होते हैं तो पूरा समाज बदल जाता है, पूरा देश बदल जाता है। तो भाई, ऐसे ही सशक्त बनिए, स्वयं सहायता समूह से जुड़िए, और फिर अगर कोई आपको छेड़ दे और आपसे कह दे तुम जानती ही क्या हो, तो बस सुना देना आप भी उसे, मोरी कदर न जानी रे अनाड़ी बलमा। तो चलो, अपने लोक गायक क्या की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत सुनते हैं।

बहनों आप सुन रही हैं आपका अपना पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम पनघट अपनी बहन सोमा जैन के संग। और आज हमने बात करी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के ऊपर। भाई स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खुद का भविष्य तो सुधारना है पर समाज के लिए भी तो काम करना है। भाई देखो अभी भरी गर्मियां हैं और भरी गर्मियों में बस एक ही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। समझ में आ रहा है कौन सी चीज़ की बात कर रही हूँ? भाई मैं कर रही हूँ पानी की बात। इस गर्मी में कुछ मिले ना मिले बस पीने को पानी मिल जाए तो मानो

0: अमृत मिल जाता है। लेकिन आज पानी की बर्बादी बहुत हो रही है, ऐसे में हमें समझना होगा और पानी को बचाने के लिए कदम भी उठाने होंगे। तो चलो इस विषय को और अच्छा समझते हैं हमारी आज की वार्ताकार शशिकला द्विवेदी से, जो बता रही हैं जल है तो कल है।
1: जल से ही पृथ्वी पर जीवन, जल की अमिट कहानी है, जल के बिना न जीना संभव, जल से सकल रवानी है। अर्थात जल से ही हमारी धरती पर जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब जल के ही कारण है। जल जीवन का आधार है, जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी का जीवन जल से ही गतिमान है। जल है तो जीवन है, जल है तो गति है, जल है तो जीवन में सरसता है, जल है तो जीवन में आनंद है। अतः जल है तो कल है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जल हम सभी की प्यास को ही शांत नहीं करता, वरन हमारे जीवन से जुड़ी हुई जल हम सभी की प्यास को ही शांत नहीं करता, वरन हमारे जीवन से जुड़ी हुई सभी क्रियाएं जल के द्वारा ही पूरी होती हैं। जल के बिना इस जगत में न स्वच्छता है और न सुंदरता। जल के बिना न हम हाथ मुंह धो सकते हैं, न अपने कपड़े और न जूठे बर्तन। हमारा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक जल पर ही आश्रित है। हम सभी अपनी भूख मिटाने के लिए जो खाद्य पदार्थ खाते हैं सभी जल के द्वारा ही उत्पन्न और बनाए जाते हैं। अतः पानी के बिना जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जल को धरती का अनमोल खजाना कहना भी अतिशयोक्ति न होगा। जीवन के लिए परम आवश्यक जल की कमी आज एक ज्वलंत समस्या है। यद्यपि हमारी पृथ्वी का 70% भूभाग जल से ही घिरा हुआ है, तथापि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी मात्र 3% ही है। बढ़ती जनसंख्या और घटते जल स्तर ने जल की कमी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जल की उपयोगिता और महत्ता को देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि समाज और सरकार जल के संचय, प्रबंध और संरक्षण पर भरपूर ध्यान दें। जल संकट से ग्रस्त मनुष्य के सामने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस प्रकार इस समस्या से हमारी धरती मुक्त हो। इस प्रकार जल संरक्षण आज संसार की सबसे पहली प्राथमिकता है। जल संरक्षण के लिए कुछ उपाय यहाँ प्रासंगिक हैं। आज हमें घर में, घर के बाहर, बाग बगीचों में, खेत खलिहानों में जल के संरक्षण पर ध्यान देना होगा। सर्वप्रथम हमें अपने घरों में आवश्यकता के अनुसार ही पानी खर्च करना होगा तथा पानी की बर्बादी पर पूरी तरह से रोक लगानी होगी। घर के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भी पानी की बर्बादी रोकनी होगी। अगर कहीं व्यर्थ बहता हुआ पानी दिखाई देता है तो संबंधित विभाग को या संबंधित व्यक्ति को सूचित करना होगा। पानी की खपत कम करने के लिए कृषि और कल कारखानों में भी नई तकनीक को अपनाना होगा। वृक्ष हमारे और हमारी प्रकृति के घनिष्ठ मित्र हैं, अतः हमें वृक्षारोपण पर भी ध्यान देना होगा तथा संतान की भांति लगाए हुए वृक्षों की देखभाल करनी होगी, क्योंकि वृक्ष हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही साथ धरती की नमी को बनाए रखना, जमीन के कटाव को रोकना, बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करना भी वृक्षों का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा

0: वर्षा से प्राप्त जल को एकत्रित करके उसका प्रयोग विविध घरेलू कार्यों और कृषि आदि में करके भी जल संकट की समस्या से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आज आवश्यक हो गया है कि सरकारी और गैर सरकारी संगठन एक दूसरे के सहयोग से जल के विविध स्रोत जैसे नदी, तालाब, नहर, झरने आदि के जल को प्रदूषित होने से बचाएं तथा जल की बर्बादी पर रोक लगाएं। मेरी दृष्टि में यह भी आवश्यक है कि हम जल के प्रति अपने मन में आस्था और श्रद्धा का भाव जागृत करें, उसके सदुपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करें तथा उसके दुरुपयोग से बचें। वर्षा के जल को संचित करने के लिए तालाबों की खुदाई तथा बावड़ी आदि का निर्माण भी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्षा के द्वारा प्राप्त पानी को प्रत्येक घर में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक नगर में संचय किया जाए। वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम के द्वारा धरती के गर्भ में पहुंचाया जाए। भूजल के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगे। हम जल के प्रति अपने मन में मरुस्थल में रहने वाले लोगों की भांति श्रद्धा और आस्था का भाव जगाएं। हम सभी मिलकर जल का सदुपयोग करें तथा पानी के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें। अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, उनको जल का दुरुपयोग करने से रोकें। इस प्रकार हम सभी जल के उचित संचय, प्रबंध और संरक्षण के द्वारा मानव सभ्यता के कल को सुरक्षित कर सकेंगे। निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकती हूँ कि जल पृथ्वी की बहुमूल्य निधि है। धरा को वसुंधरा बनाने में जल का महत्वपूर्ण योगदान है। जल है तो जीवन है, जल है तो स्वच्छता है, जल है तो सुंदरता है। जब तक धरती पर तालाब, झरने, नदियाँ और नहरें हैं, जब तक ये सभी जल से परिपूर्ण हैं, तब तक पृथ्वी का कण कण उपयोगी है, आकर्षक है और मनोहर है। जब तक हमारी धरती पर पानी है, तब तक ही हमारा जीवन है। जब तक धरती पर जल है, तब तक ही पृथ्वी पर पक्षियों का कलरव है। जब तक धरती पर पानी है, तब तक ही नदियों का मधुर कलकल है और झरनों का मनोहर संगीत है। इस धरा पर जब तक जल है, तब तक ही हलचल है। जब तक जल है, तब तक ही हमारे खेतों में, हमारे बागों में, हमारे उपवनों में और हमारे वनों में हरियाली है। जब तक संसार में जल है, तब तक ही हमारे घर में, हमारे गांवों में, हमारे नगरों में, हमारे देश में और हमारे संसार में खुशहाली है। हमारी धरती पर जब तक पानी है, तब तक ही गीत है, संगीत है, नृत्य है और उत्सव है। लेकिन जल नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
1: तो बहनों, अभी आप सब ने सुना शशिकला द्विवेदी जी से कि उन्होंने कहा जल नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए जल की बचत तो हम सबको करनी है और ये पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, हमारे पर्यावरण को बचाने का। अब देखो, कल हम सभी ने विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया। ये जो दिवस होते हैं ना, ये हमें यही समझाने के लिए मनाए जाते हैं कि कितनी आवश्यकता है जीवन को बचाने के लिए इन सब चीज़ों की। ठीक इसी तरह बहनों, आज यानी कि 6 जून को हम सब विश्व कीट दिवस के रूप में मनाते हैं। आप भी सोच रही होंगी कि भला कीड़े मकौड़ों के लिए भी कोई दिन होता है, ये कैसा दिन है और फिर हमें इसके बारे में जानने की क्या ज़रूरत है। तो मेरी प्यारी बहनों, इस दिन को मनाने का सबसे पहला

और बड़ा उद्देश्य आपको जागरूक करना है। इसका मकसद हमें डराना नहीं बल्कि समझना है कि सबसे पहले तो हमारी सेहत की रक्षा हमको करनी है। हमारे घरों में और खेतों में जो नुकसानदेह कीट जैसे मच्छर मक्खी होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं और उससे हम अपने परिवार और बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें, ये दिन उसके प्रति हमें जागरूक करता है। दूसरा, फसलों की सुरक्षा। खेतों में अंधाधुंध रासायनिक दवाइयां छिड़काव के कारण हमें अब समझना होगा कि कीड़ों को कैसे हम नियंत्रित करें। हमें दवाइयां बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करनी और मित्र और शत्रु की भी हमें पहचान करनी होगी। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है

रखें ये दिन उसके प्रति हमें जागरूक करता है। दूसरा, फसलों की सुरक्षा। खेतों में अंधाधुंध रासायनिक दवाइयाँ छिड़काव के कारण हमें अब समझना होगा कि कीड़ों को कैसे हम नियंत्रित करें। हमें दवाइयाँ बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करनी, और मित्र और शत्रु की भी हमें पहचान करनी होगी। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर कीड़ा दुश्मन नहीं होता। कुछ कीड़े हमारी फसलों को बचाने ते हैं तो कुछ मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिन्हें हमें अब बचाना है। तो सरल शब्दों में अगर समझें तो इस दिन का उद्देश्य हमारे स्वास्थ्य, हमारी खेती और पर्यावरण की रक्षा करना है, जो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो भाई ऐसे में कुछ कीड़े तो हमें सताते भी हैं ना, जैसे खटमल। तो अगर खटमल को कहीं देखें तो हम सब यही कहेंगे ना।

0: भाई खटमल ना काटे, मच्छर ना काटे, इसके लिए दादी जी सलाह देती हैं कि हमें नीम के तेल में कपूर जलाना चाहिए, इससे मच्छर कम होते हैं। बातें और भी, पर फिलहाल एक अल्प विराम।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: तो भाई कार्यक्रम ग्रामीलो, कार्यक्रम पनघट में बहनों, जल्दी से चलते हैं आपकी रसोई की तरफ और देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। बहनों आज हम आलू कलौंजी बनाने वाले हैं, तो इसके लिए जो सामग्री चाहिए वो लिख लें। 5 मध्यम आकार के आलू, 3 काली इलायची, 12 से 20 साबुत काली मिर्च, 2 से 3 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच कलौंजी, 2 से 3 तेज पत्ता, 3 हरी मिर्च, 2 टमाटर कद्दूकस किए, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक वो तो स्वाद अनुसार चाहिए, इसके साथ साथ चाहिए 1/2 चम्मच गुड़ कद्दूकस किया, 1/2 चम्मच नींबू का रस, सजाने के लिए कुछ पुदीना पत्तियाँ। ये थी सामग्री। अब इसे बनाएंगे कैसे वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले आलूओं को छीलकर लंबाई में काट लेंगे। काली इलायची और काली मिर्च को दरदरा पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके हींग, कलौंजी, तेजपत्ता और कुटे हुए मसालों को डालेंगे। अब कटे हुए आलू को टुकड़ों जो है उनको मिला लेंगे। इसके बाद हरी मिर्च डालेंगे। जब आलू अधपक्का हो जाए तो इसमें टमाटर भी मिला देंगे, साथ ही लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक मिला लेंगे। अब इसमें 2 कप पानी डालेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। इसके बाद इसमें गुड़, नींबू का रस डालकर अच्छे से मिलाएंगे। आलू जब पक जाए तो चूल्हे से उतार लेना है और पुदीने की पत्तियों से इसे सजा देना है। तो तैयार है आपका आलू कलौंजी, तो ज़रूर बनाइएगा। गर्मियों में समझ में नहीं आता क्या बनाना है, तो आलू कलौंजी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है बहनों आज कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और आप ज़रूर कीटों से अपने आप को सावधान रखेंगे। भाई विश्व कीट दिवस है और स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ेंगी। ऐसी ही अनेक बातों के साथ फिर अगले सप्ताह आपसे कार्यक्रम पनघट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम बहनों।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम पनघट आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं गौरी खन्ना की आवाज में कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। श्रोताओं, दोपहर के 2 बजने को है। अब आप सुनेंगे मिड डे न्यूज, तत्पश्चात हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: In Punjab, at least 9 people killed after a vehicle collides with a truck on Firozpur Fazilka Road this morning. IMD issues red alert for heavy rainfall over Keralam and Mahe till tomorrow. And in cricket, Shreyas Iyer replaces Suryakumar Yadav as India's new T20 I captain, Vaibhav Suryavanshi included in squad for first time. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
3: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज

0: शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
1: With Nepal, we have an expansive agenda.
2: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
1: Partnership that we have with Nepal.
0: भारत के तीन दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
3: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले दो दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने IPL 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता, बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम

0: माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। समय है उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। इसी के साथ उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था फिल्म मन मौजी से। राजेंद्र कृष्ण के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। अगला गीत है फिल्म छाया से। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ें हैं। राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना है, सी रामचंद्र की संगीत रचना।

लता मंगेशकर की आवाज में यह गीत था फिल्म अनारकली से। राजेंद्र कृष्ण की लेखनी को सुरों में पिरोया था सी रामचंद्र ने।

ये गीत था फिल्म सीआईडी से, गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, जहाँ निसार अख्तर के बोल थे ओपी नैयर की धुन। इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब संपन्न होता है।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म जुदाई से, अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वर थे। नदीम श्रवण की धुन पर बोल थे समीर के। अगला गीत है फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं। सुधाकर शर्मा की शब्द रचना है, हिमेश रेशमिया की संगीत रचना।

ये गीत था फिल्म बीवी नंबर वन से हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाजें हैं। अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गीत था समीर का। अगला गीत है फिल्म दिल मांगे मोर से सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजें हैं। समीर के शब्दों को संगीत में ढाला है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म बाजीगर से यह गीत था कुमार सानू और अनु मलिक की आवाजों में। देव कोहली का गीत था, अनु मलिक का संगीत। इसी के साथ कार्यक्रम गीत गुंजन अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और

0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश के युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। KL राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: वीडियो में भी 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:05। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्तिपरक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम में युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में सकुरा साइंस प्रोग्राम विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा विज्ञान, केवल एक विषय नहीं जीवन पद्धति है, और वार्ताकार होंगी मेघा राघव। आइए जाने में बात करेंगे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। शाम 6 बजे का समय रहे

का कार्यक्रम ग्रामीलोक का आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि विषय पर सुनिए चर्चा। मक्की की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट रोग और उनका प्रबंधन विषय पर डॉक्टर अशरफ अली से बातचीत करेंगे अनिंद्र सिंह। कार्यक्रम मजदूर मंडल में आज की चर्चा का विषय है गर्मी में लू से बचाओ और विश्व कीट दिवस। वार्ताकार रिंकू चक्रवर्ती हमें बताएंगे कि परिवेश के बदलते तरीके कौन से हैं। समय रहेगा 6:30। शाम 7:10 पर सुनिएगा जीव जंतुओं में भी होती है संवेदना विषय पर वार्ताकार डॉक्टर नवीन शर्मा की वार्ता कार्यक्रम विविधा में। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का समय रहेगा 7:31 और रात्रि 8:00 सुनिएगा भजन संध्या। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा रेडियो पत्रिका और रात्रि 10:00 आनंद लीजिएगा संगीत के अखिले भारतीय कार्यक्रम का। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन। कलाकार वाणी जयराम से सुनिएगा श्री राम चरित मानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे विनय कुमार की वार्ता विषय रहेगा पशु खाद्य प्रबंधन। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कॉन्टैक्ट लेंस विषय पर वार्ता और वार्ताकार होंगी डॉक्टर वीणा अग्रवाल। सुबह 9:45 पर सुनिएगा लोक संगीत और 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत।

अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या।

महेंद्र कपूर की आवाज से सजे इस भक्ति गीत को हमने लिया था फिल्म गोपी से। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और गीतकार राजेंद्र किशन। अगला भक्ति गीत हमने लिया है फिल्म सीमा से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज है मन्ना डे की।

जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने। जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

ये भक्ति गीत हमने फिल्म आदि पुरुष से लिया था। संगीत और आवाजें थीं साचेत टंडन और परंपरा टंडन की। अगली प्रस्तुति फिल्म दादा से है, जिसके रचनाकार हैं गौहर कानपुरी। संगीत उषा खन्ना ने दिया है और आवाज दी है सुमन कल्याणपुर ने।

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। समय के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी प्रकीर्णा के साथ।

नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट प्रकीर्णा को कार्यक्रम युववाणी में, जहां हम करते हैं ढेर सारे काम की बात लेकिन आपके एंटरटेनमेंट के साथ। तो दोस्तों बताइए, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों मौसम की बात करें तो कल बादल छाने से कुछ राहत तो थी, लेकिन आज तेज़ धूप के साथ गर्मी बरकरार है। कभी कभी सोचती हूँ कि इतनी गर्मी में भी लोग ताजमहल देखने कैसे आ जाते हैं। लेकिन वही बात है दोस्तों, हमारी तरह उनको भी जब छुट्टी मिल जाती होगी वो भी अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पहुँच जाते होंगे। और साथियों, हम भी तो अक्सर विदेश घूमने का सपना देखते हैं, जैसे बाहर के लोग आगरा के ताजमहल का दीदार करने आते हैं, यहाँ की संस्कृति को

0: दोस्तों, जिस तरह के सवाल आमिर खान इस गाने में बच्चों से करते हैं, उसी तरह के सवाल हमारे मन में भी उठते हैं, है ना? कुछ लोगों को साइंस में बहुत इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग इसे बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे में एक सवाल मन में आता है कि क्या विज्ञान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की किताबों तक सीमित है, या फिर ये हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी मौजूद है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं मेघा राघव की वार्ता, जिसका विषय है विज्ञान केवल एक विषय नहीं, जीवन पद्धति है।
1: वर्तमान समय में हम चाहते हुए भी विज्ञान को अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। यदि विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना करें तो हमें एक गहरा शून्य ही दिखाई देता है। एक सामान्य उदाहरण के माध्यम से इस बात को साबित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि अगर एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार ना किया होता तो शायद पूरी दुनिया अंधेरे में डूबी रहती। हियरिंग एड के आविष्कार ने बहरों को सुनने में मदद की है और कृत्रिम अंगों के उपयोग से अपंग व्यक्ति भी आज चलने फिरने में लायक बन गए हैं। यहां विज्ञान वरदान के समान साबित हुआ है। विज्ञान के कुछ सिद्धांतों और उनके व्यावहारिक उपयोग से बने उपकरणों एवं मशीनों ने हमारे जीवन को आरामदायक और सुविधा संपन्न बना दिया है। जैसे एक अहम सिद्धांत है विज्ञान का, जिसे सर आइजक न्यूटन ने खोजा और जिसे न्यूटन के थर्ड लॉ के रूप में पूरी दुनिया जानती है। यह नियम कहता है कि हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, और उसी तर्ज पर अगर हम अपने व्यावहारिक जीवन में देखें तो विज्ञान और जीवन का समावेश कैसे होता है, आइए समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। इस तरह हमारे जीवन में हम अच्छे कर्म करते हैं तो वह कर्म लौट के हमारे पास अवश्य आते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए, और जब हम बुरा कर्म करते हैं तो वह भी लौट कर आ जाते हैं। विज्ञान रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान लाता है और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों का उत्तर भी प्रदान करता है। इस प्रकार विज्ञान ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैनलों में से एक है। इसकी एक विशिष्ट भूमिका है, फिर भी हमारे समाज के लाभ के लिए इसके कई कार्य हैं, यानी ज्ञान और शिक्षा में सुधार करना और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। आज विज्ञान हम सबके जीवन के जीने की एक पद्धति बन चुका है। विज्ञान की व्यापकता को यदि हम प्राचीन काल से जोड़ें तो विज्ञान की जड़ें प्राचीन काल से ही मौजूद रही हैं, जैसे आर्यभट्ट, चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य, वराहमिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने अपने समय में गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शून्य की खोज से लेकर योग और आयुर्वेद तक भारत ने विज्ञान को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आज विज्ञान ने जो उन्नति की है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नई नई दवाइयां, सर्जरी के नवीनतम तरीके, अंग प्रत्यारोपण और कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों

छू रहा है। मंगलयान और चंद्रयान जैसी उपलब्धियां हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण का ही तो परिणाम है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स और डेटा साइंस आज दुनिया को नई दिशा दे रही है। पर्यावरण संरक्षण में भी विज्ञान ने हमें यह समझाने में मदद की है कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए। अक्षय ऊर्जा स्रोतों का विकास भी विज्ञान की ही देन है। अक्सर हम विज्ञान को केवल एक विषय के रूप में देखते हैं जिसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, लेकिन वास्तव में विज्ञान एक दृष्टिकोण है, एक तरीका है सोचने का, समस्याओं को हल करने का और जीवन को बेहतर बनाने का। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। हमारे दैनिक जीवन का कोई भी पहलू आज विज्ञान से अछूता नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट में उपयोग होने वाले रसायन विज्ञान के कारण ही हमारे दांत आज स्वस्थ रहते हैं। रसोई में गैस स्टोव से लेकर माइक्रोवेव तक हर जगह विज्ञान का दखल है। यातायात व्यवस्था, मौसम पूर्वानुमान, कृषि में नई तकनीकें, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब में विज्ञान का स्पर्श है।

0: सोने तक हम विज्ञान से घिरे हुए हैं। हमारे दैनिक जीवन का कोई भी पहलू आज विज्ञान से अछूता नहीं है। जब हम सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट में उपयोग होने वाले रसायन विज्ञान के कारण ही हमारे दांत आज स्वस्थ रहते हैं। रसोई में गैस स्टोव से लेकर माइक्रोवेव तक हर जगह विज्ञान का दखल है। यातायात व्यवस्था, मौसम पूर्वानुमान, कृषि में नई तकनीकें, स्वास्थ्य सेवाएं, इन सब में विज्ञान का स्पर्श है। लेकिन विज्ञान हमें आंख बंद कर मानने की बजाय तर्क और प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष निकालने की शिक्षा देता है। यही कारण है कि विज्ञान केवल तकनीकी प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने से हम अंधविश्वास और भ्रम से बच सकते हैं और तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। आज की दुनिया में विज्ञान के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोविड-19 महामारी के दौरान वैज्ञानिक शोधों ने वैक्सीन विकसित कर करोड़ों लोगों की जान बचाई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, अंतरिक्ष अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी, यह सब विज्ञान की ही उपलब्धियां हैं जो मानव जीवन को निरंतर नए आयाम दे रही है। आज विज्ञान का अर्थ केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित है। यह एक सोचने समझने की प्रक्रिया है जो हमें तर्क विश्लेषण और नवाचार के रास्ते पर ले जाती है। आज युवाओं को, जो इस देश का भविष्य है, आगे आकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़कर विज्ञान को एक नए नजरिए से अपनाना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि युवा वैज्ञानिक सोच विकसित करें, खोज और अनुसंधान के प्रति रुचि बढ़ाएं, समाज की समस्याओं का समाधान विज्ञान के माध्यम से खोजें, नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा दें और स्टार्टअप्स में योगदान दें। भारत के महान वैज्ञानिकों से प्रेरणा लें, मसलन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने युवाओं को विज्ञान की ओर प्रेरित किया। डॉक्टर CV रमन, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन पर अनुसंधान कर रमन प्रभाव की खोज की। होमी भाभा, जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी। विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। मंगलयान मिशन के वैज्ञानिक, जिन्होंने कम लागत में मंगल ग्रह पर उपग्रह भेजकर भारत का नाम रोशन किया। आज के युग में विज्ञान के क्षेत्र में करियर की असीम संभावनाएं हैं, जैसे इंजीनियरिंग, चिकित्सा, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान। इन सभी क्षेत्रों में न केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, बल्कि नवाचार के भी अपार अवसर हैं। कहने का तात्पर्य मित्रों यही है कि विज्ञान केवल एक विषय नहीं, बल्कि जीवन की एक अनिवार्य पद्धति है। यह हमें आगे बढ़ने, समस्याओं को हल करने और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। आज विज्ञान केवल पाठ्यक्रम अथवा प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। यह हमारे जीवन के हर पहलू में समाहित है। यह एक सोचने समझने की प्रक्रिया है जो हमें तर्क विश्लेषण और नवाचार के रास्तों पर ले जाती है। तो आओ हम सब मिलकर विज्ञान को अपनाएं, ज्ञान की ज्योति से जीवन को रोशन बनाएं।
1: दोस्तों, ये थी मेघा राघव द्वारा प्रस्तुत वार्ता, जिसका विषय है विज्ञान केवल एक विषय नहीं, जीवन पद्धति है। वास्तव में विज्ञान केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी तक सीमित नहीं है। जब हम किसी बात को तर्क के आधार पर समझते हैं, अंधविश्वास की जगह प्रमाण को महत्व देते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और नई सोच अपनाते हैं, तब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन का हिस्सा बना रहे होते हैं। विज्ञान हमें केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने का सही तरीका भी सिखाता है, और यही वैज्ञानिक सोच एक विकसित समाज की पहचान होती है। जब हम किसी खबर को बिना जांचे परखे आगे भेज देते हैं या किसी दावे पर बिना सबूत के विश्वास कर लेते हैं, तब वैज्ञानिक सोच की कमी साफ दिखाई देती है। आज के समय में साइंटिफिक टेम्परामेंट केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। ये हमें बेहतर डिसीजंस लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और समाज के प्रति जिम्मेदार बनने में मदद करता है। शायद यही कारण है कि हमारे संविधान में भी नागरिकों के मूल कर्तव्यों में साइंटिफिक टेंपर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को विकसित करने की बात कही गई है। ऐसा कौन से आर्टिकल में लिखा है, आप पता कीजिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चलेंगे नेपाल के एक प्रसिद्ध मंदिर की यात्रा पर। बने रहिए हमारे साथ।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: वेलकम बैक दोस्तों, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव में हम आपको लेकर चल रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित वर्ल्ड फेमस पशुपतिनाथ मंदिर की ओर। दोस्तों, नेपाल और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं और पशुपतिनाथ मंदिर इस साझा विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बागमती नदी के किनारे स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, पशुपति का अर्थ है समस्त जीवों के स्वामी। इस मंदिर को हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शिव मंदिरों में गिना जाता है। वर्तमान मंदिर का निर्माण लगभग 17वीं शताब्दी में माना जाता है, हालांकि इसका इतिहास इससे भी अधिक प्राचीन है। मंदिर की वास्तुकला विशेष रूप से आकर्षक है। ये पैगोडा स्टाइल आर्किटेक्चर में निर्मित है, जिसकी दोहरी छत और सुंदर लकड़ी की नक्काशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग चार मुखों वाला है, जो शिव के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व करता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। भारत सहित दुनिया के कई देशों से साधु संत और श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। वर्ष 1979 में इसे यूनेस्को द्वारा पशुपतिनाथ टेम्पल क्षेत्र सहित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। दोस्तों, पशुपतिनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, इतिहास और आस्था का जीवंत केंद्र है। तो साथियों, अगर आपको भी कभी नेपाल जाने का अवसर मिले तो इस अद्भुत धरोहर को जरूर देखने जाएं।

वेलकम बैक दोस्तों, अब नज़र डालते हैं इस हफ्ते की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की। इस सप्ताह विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में एक विशेष सिंपोजियम आयोजित किया गया, जिसमें इको फ्रेंडली एंड इंक्लूसिव AI पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि भविष्य में AI का विकास केवल स्मार्ट ही नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी होना चाहिए। और ये एकदम सही बात है, क्योंकि आज जब AI हमारे मोबाइल, शिक्षा और शोध का हिस्सा बन रहा है, तब उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ना भी बेहद ज़रूरी है। अब शिक्षा और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की ओर बढ़ते हैं। UGC नेट जून 2026 की परीक्षा 22 जून से शुरू होने वाली है, जबकि एडमिट कार्ड्स 15 जून तक जारी होने की संभावना है। देश भर के 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। इस समय यह बहुत ज़रूरी है कि आप रिविजन पर ध्यान दें और मॉक टेस्ट देकर अपना स्कोर इनक्रीज करने की कोशिश करें। साथ ही दोस्तों, स्वयं प्लेटफॉर्म के विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज की परीक्षाएं 17 जून से शुरू होने वाली है। स्वयं भारत सरकार का एक प्रमुख मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप फ्री में अपने पसंद के कोर्सेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की। इस सप्ताह नवाचार मंत्र नामक एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के युवा इनोवेटर्स को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत एग्रीटेक, हेल्थ टेक, एड टेक और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में काम करने वाले युवाओं को मेंटोरशिप, इंडस्ट्री सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो आज का भारत उसे स्टार्टअप में बदलने के लिए पहले से कहीं अधिक अवसर प्रदान कर रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड की, जहां इस सप्ताह और आने वाले दिनों में कई बड़े आयोजन चर्चा में हैं। सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वन ऑफ टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, जो कि 10 जून तक चलेगा। टेनिस प्रेमियों के लिए भी ये सप्ताह बेहद रोमांचक है। दुनिया की नज़रें इस समय फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबलों पर है, और फुटबॉल प्रेमियों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। मोस्ट अवेटेड फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर दुनिया भर की टीमें अपने अंतिम मैच के अभ्यास कर रही हैं। तो दोस्तों, आप भी इन मैचेस के लिए तैयार रहें और बिना रुके, बिना हार माने अपनी फेवरेट टीम्स को सपोर्ट करते रहें।

वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप ध्यान से कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था। हमारे कुछ एक्टिव लिसनर्स ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया होगा। दोस्तों, सवाल था कि भारत के संविधान में वो कौन सा आर्टिकल है जो साइंटिफिक टेंपर डेवलप करने की बात करता है, और इसका जवाब है आर्टिकल 51A सब क्लॉज H, जो कहता है कि साइंटिफिक टेंपर यानी वैज्ञानिक सोच, ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद, और जिज्ञासा यानी स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की भावना विकसित करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो साथियों, उम्मीद है कि आप भी अपना ये कर्तव्य अच्छे से निभाएंगे और अपनी लाइफस्टाइल को साइंटिफिक तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। और साथियों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी अपनी रेडियो साथी प्रकीर्णा के साथ। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

कहते हैं कि खेती केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। लेकिन खेती करने वाला किसान ही सबसे अच्छी तरीके से जानता है कि खेत में फसल उगाने के लिए कितनी मेहनत और कितना खर्च करना पड़ता है। कभी बीज खरीदना पड़ता है, कभी खाद और दवा की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो कभी सिंचाई के लिए खर्च करना पड़ता है। कई बार किसान सोचते हैं कि फसल बिकेगी तब खर्च निकलेगा, लेकिन खेती के काम तो पहले ही शुरू हो जाते हैं, है ना किसान भाइयों? तो ऐसे में किसानों की मदद के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो किसान साथियों, आगे इस विषय में और चर्चा करने से पहले करते हैं आप सभी का स्वागत कार्यक्रम ग्रामीलोक में, और आज आपके साथ आप की साथी शोभना है। स्वीकार करिए हमारी राम राम। तो किसान साथियों, जैसे

घर चलाने के लिए हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा होता है। वैसे ही खेती में भी हर मौसम पर बीज, खाद, दवा और सिंचाई के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा आर्थिक सहारा दे देता है, उसी तरीके से ये योजना किसानों को खेती के ज़रूरी खर्चों में मदद पहुंचाती है। जैसे खेत की तैयारी हो, बीज खरीदना हो या खेत की देखभाल करनी हो, हर छोटी बड़ी ज़रूरत में ये सहायता राशि किसानों के काम आ सकती है। इस योजना के तहत जो हमारे पात्र किसान हैं उनको हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, और ये राशि एक साथ नहीं दी जाती किसान साथियों, बल्कि 2,000-2,000 रुपये की 3 किस्तों में सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसान जब फसल बोता है तो समय समय पर पानी और खाद देता है, उसी तरीके से ये सहायता भी साल में अलग अलग समय पर मिलती है ताकि खेती के ज़रूरी खर्चों में मदद मिल सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना के लाभ क्या क्या हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहली चीज़ तो कि बीज खरीदने में आपको सहायता मिलती है, खाद और कीटनाशक खरीदने में मदद मिलती है, छोटे मोटे कृषि कार्यों का खर्च निकालने में भी आपको सहारा मिलता है, राशि सीधे बैंक खाते में आने से पारदर्शिता बनी रहती है। सोचिए जब बुआई का समय हो और किसान को बीज या फिर खाद खरीदना हो, तब मिलने वाली ये सहायता उसके काफ़ी काम आ सकती है, जिससे किसानों को अपनी ज़रूरतों के लिए इधर उधर भागदौड़ कम करनी पड़ती है और वो खेती के काम पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। किसान साथियों, इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर कृषि भूमि यानी कि खेती की ज़मीन दर्ज हो, जिनका आधार नंबर और बैंक खाता सही तरीके से लिंक हो। छोटे और सीमांत किसानों को भी मिलती है और उनके परिवार भी ये लाभ ले सकते हैं, और जिन किसानों ने पीएम किसान के लिए पंजीकरण करवाया है और ईकेवाईसी पूरी की है, उन किसान भाइयों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। किसान भाइयों, आज के समय में खेती केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही जानकारी से भी आगे बढ़ती है, इसीलिए अगर आप या फिर आपके आसपास कोई किसान इस योजना के लिए पात्र हैं तो उनका पंजीकरण और ईकेवाईसी समय पर ज़रूर करवाएं। याद रखिए किसान साथियों, खेत में समय पर किया गया छोटा निवेश भी अच्छी फसल का आधार बनता है, उसी प्रकार सरकार की ये सहायता राशि छोटी ज़रूर लग सकती है लेकिन सही समय पर मिल जाए ना तो किसान के कई ज़रूरी काम आसान हो सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप भी इस योजना का लाभ ज़रूर लेंगे, और इस समय एक लाभ लेने की बात और है, वो है आपके मनोरंजन की। तो किसान साथियों, आप तो जानते ही हैं कि आपके मनोरंजन में हम कभी कोई कमी नहीं करते, पर जैसे आप देख ही रहे हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो क्यों ना इस गर्मी में भी हो जाए थोड़ा सा मनोरंजन लोकगीत के माध्यम से।

किसान भाइयों, इस लोकगीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। भाइयों, खेत में अच्छी फसल पाने के लिए केवल उन्नत बीज और खाद का प्रयोग ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि फसल को कीटों और रोगों से भी बचाना उतना ही ज़रूरी होता है। अक्सर किसान भाई पूरी मेहनत से मक्के की खेती करते हैं, लेकिन समय रहते अगर कीटों और रोगों की पहचान और उनका नियंत्रण ना किया जाए तो उपज पर काफ़ी असर पड़ सकता है। जैसे हम अपने परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर तुरंत इलाज करवाते हैं, उसी तरीके से फसल में भी किसी कीट या फिर रोग के लक्षण दिखाई दें तो समय रहते उसका प्रबंधन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही समय पर सही उपाय अपनाकर हमारे किसान अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और बेहतर उत्पादन भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, मक्के की फसल में तना छेदक, फॉल, आर्मी वर्म जैसे कीट और रोग किसानों के लिए चुनौती बन सकते हैं। इनकी पहचान कैसे करें, इनसे होने वाले नुकसान को कैसे समझें और इनके प्रभावी प्रबंधन

0: प्रबंधन के लिए क्या उपाय अपनाएं, इसी विषय पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता। तो आइए सुनते हैं मक्के की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट, रोग और उनका प्रबंधन विषय पर कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अशरफ अली की ये वार्ता।
1: किसान साथियों, मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न, चारा एवं औद्योगिक फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मक्का भारत की प्रमुख खाद्यान्न, चारा एवं औद्योगिक फसलों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान समय में मक्का का उपयोग मानव आहार, पशु आहार, पोल्ट्री फीड, स्टार्च उद्योग, एथेनॉल निर्माण और विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बढ़ती मांग के कारण किसान बड़े क्षेत्रफल में इसकी खेती कर रहे हैं, परंतु विभिन्न कीट एवं रोग मक्का उत्पादन में गंभीर बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि समय पर कीटों एवं रोगों की पहचान करके वैज्ञानिक, जैविक और समेकित प्रबंधन अपनाया जाए तो उत्पादन हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है और उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मक्के की फसल में प्रारंभिक अवस्था से लेकर दाना बनने तक विभिन्न प्रकार के कीट आक्रमण करते हैं। इनमें तना छेदक, फॉल आर्मीवर्म, माहू, जेसिड और दीमक प्रमुख हैं। तना छेदक कीट मक्का की प्रारंभिक अवस्था का एक महत्वपूर्ण कीट है। इसकी सुंडियां पौधों की पत्तियां और तनों में छेद करके अंदर प्रवेश कर जाती हैं तथा अंदर से पौधे को खाती रहती हैं। प्रभावित पौधों की मध्य पत्ती सूख जाती है, जिसे डेड हार्ट कहा जाता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधे कमजोर होकर सूख जाते हैं और भुट्टों का विकास प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए तथा फसल अवशेषों को नष्ट करना चाहिए ताकि कीट के प्यूपा समाप्त हो जाएं। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अधिक नत्रजन की मात्रा कीट प्रकोप को बढ़ाती है। जैविक नियंत्रण के अंतर्गत ट्राइकोग्रामा कार्ड 50,000 परजीवी प्रति हेक्टेयर 10 दिन के अंतराल पर लगाना लाभकारी रहता है। नीम आधारित उत्पाद एजिडा रेचिटिन 1500 ppm का 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव प्रभावी पाया गया है। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरांट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC का 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा स्पिनोसेड 45 SC का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर एमामेक्टिन बेंजुएट 5 SG का 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग किया जा सकता है। वर्तमान में फॉल आर्मी वर्म मक्का की फसल का सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है। इसकी इल्ली अत्यधिक भक्षण करती है और कम समय में बड़ी मात्रा में फसल को नष्ट कर देती है। प्रारंभिक अवस्था में ये पत्तियों को खुरचती है और बाद में बड़े बड़े छिद्र बना देती है। गंभीर प्रकोप में पूरा पौधा नष्ट हो सकता है। यह कीट विशेष रूप से पौधों की मध्य कलिका में छिपकर नुकसान पहुंचाता है, जिसका नियंत्रण कठिन हो जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत की नियमित निगरानी अत्यंत जरूरी है। प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाकर नर पतंगों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। अंड समूहों एवं छोटी इल्लियों को हाथ से नष्ट करना चाहिए और खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु एजा डिरेक्टिन 1500 ppm 5 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से या बवेरिया बेसियाना 5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव लाभकारी होता है। खेत में बर्ड पर्च लगाने से पक्षी इल्लियों को खाकर उनकी संख्या कम कर देते हैं। रासायनिक नियंत्रण हेतु क्लोरांट्रा नीलीप्रोल 18.5 SC 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में और स्पिनेटोरम 11.7 SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या थायोमेथोक्साम और लैम्डा साई हेलुथ्रिन 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के छिड़काव ये प्रभावी होते हैं। दवा का छिड़काव पौधों की मध्य कलिका में अच्छी तरह पहुंचना चाहिए। माहू और जेसिड जैसे रस चूसक कीट मक्का की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये कीट पत्तियों और कोमल भागों में रस चूसकर पौधों को कमजोर कर देते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। माहू द्वारा उत्सर्जित मधु रस पर काली फफूंदी विकसित हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इनके नियंत्रण हेतु खेत को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए और संतुलित मात्रा में नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव तथा वर्टिसिलियम लेकानी का प्रयोग लाभकारी होता है। लेडीबर्ड बीटल जैसे मित्र कीटों का संरक्षण बहुत जरूरी है। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा थायमेथोक्साम 25 WG का 0.25 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। कीटों के अतिरिक्त मक्का की फसल में अनेक रोग भी गंभीर क्षति पहुंचाते हैं। इनमें मैसिड लीफ ब्लाइट, टर्सिकम लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, रस्ट एवं

0: चारकोल रॉट ये मुख्य हैं। रोग में पत्तियों पर लंबे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर पूरी पत्ती को प्रभावित कर देते हैं। ज़्यादा प्रकोप होने पर पत्तियां सूख जाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। इसके नियंत्रण हेतु रोगरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए तथा संक्रमित फसल अवशेषों को नष्ट कर देना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी का 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करना चाहिए और गौमूत्र आधारित जैविक घोल का छिड़काव लाभकारी रहता है। रासायनिक नियंत्रण हेतु मैंकोजैब 75 WP का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी अथवा प्रोपिकोनाजोल 25 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव 10 से 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। टर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग में पत्तियों पर लंबे धूसर अथवा भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। अधिक आर्द्रता एवं मध्यम तापमान की स्थिति में ये रोग तेजी से फैलता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है तथा अत्यधिक घनी बुवाई से बचना चाहिए। जैविक नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी द्वारा बीजोपचार और जीवामृत एवं पंचगव्य का छिड़काव लाभकारी रहता है। रासायनिक नियंत्रण के लिए एजोक्सीस्ट्रोबिन 23 SC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा हेक्साकोनाजोल 5 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव प्रभावी माना जाता है। डाउनी मिल्ड्यू मक्का की प्रारंभिक अवस्था का प्रमुख रोग है। प्रभावित पौधे बौने हो जाते हैं और पत्तियों की निचली सतह पर सफेद फफूंद जैसी वृद्धि दिखाई देती है। रोगग्रस्त पौधों में भुट्टों का विकास प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा आधारित जैविक बीजोपचार करना चाहिए और खेत में जलभराव नहीं होने देना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण के लिए मेटालेक्सिल 35 SD का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार और रोग दिखाई देने पर मेटालेक्सिल और मैंकोजैब का 2 ग्राम प्रति लीटर का छिड़काव करना चाहिए। रस्ट रोग में पत्तियों पर लाल भूरे रंग के छोटे छोटे उभरे हुए धब्बे बनते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां समय से पहले सूख जाती हैं और दानों का भराव प्रभावित होता है। इसके नियंत्रण के लिए संतुलित पोषण प्रबंधन और खेत में उचित वायु संचार बनाए रखना जरूरी होता है। जैविक नियंत्रण के लिए नीम अर्क और गौमूत्र आधारित जैविक घोल का छिड़काव लाभकारी होता है। रासायनिक नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी अथवा टेबिकोनाजोल 250 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। इस तरह मक्का की फसल में कीट एवं रोगों का समय पर वैज्ञानिक जैविक और समेकित प्रबंधन करके किसान उत्पादन लागत को कम कर सकते हैं और सुरक्षित एवं गुणवत्ता परक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जैविक नियंत्रण उपाय पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा रसायनों पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए किसानों को रासायनिक नियंत्रण के साथ साथ जैविक एवं समेकित प्रबंधन तकनीकों को भी अपनाना चाहिए जिससे अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
1: किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था मक्के की फसल में लगने वाले प्रमुख कीट रोग और उनका प्रबंधन, और वार्ताकार थे अनेंद्र सिंह। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। याद रखिए किसान साथियों, फसल की नियमित निगरानी, समय पर पहचान और वैज्ञानिक सलाह के अनुसार प्रबंधन ही अच्छी पैदावार की कुंजी है, और जागरूक किसान ही अपनी फसल को सुरक्षित रखकर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकता है। किसान साथियों, हमने अपने कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आपके लिए एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसमें हम आपको बताते हैं खेती की नई नई तकनीकें, नई खोज। तो आज नई खोज में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्मार्ट सिंचाई प्रणाली। किसान भाइयों, आज के समय में पानी की जो कमी है ना, खेती के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने स्मार्ट सिंचाई प्रणाली विकसित की है जो खेत को ज़रूरत के अनुसार ही पानी देती है। इस तकनीक में खेत में विशेष सेंसर लगाए जाते हैं जो मिट्टी की नमी को, यानी कि उसका जो मॉइस्चर है, उसको लगातार मापते रहते हैं। जब मिट्टी में नमी कम हो जाती है तो सिंचाई प्रणाली अपने आप चालू हो जाती है और पर्याप्त नमी होने पर बंद भी हो जाती है। इससे फसल को ज़रूरत के अनुसार पानी मिलता है। अब आपको बताते हैं कि सिंचाई जो प्रणाली है, ये स्मार्ट सिंचाई प्रणाली, इससे लाभ क्या क्या है। तो किसान साथियों, सबसे पहली चीज़ तो पानी, जो कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पानी की 30 से 50% तक की बचत हो सकती है, फसल की वृद्धि बेहतर होती है, बिजली और श्रम लागत कम होती है, अधिक सिंचाई से होने वाले नुकसान से भी बचाव होता है, उत्पादन और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अब हमारे भाई पूछेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए किसान साथियों कि घर में पानी की टंकी भर जाने पर मोटर बंद कर दी जाती है ताकि पानी व्यर्थ ना बहे। उसी प्रकार से स्मार्ट सिंचाई प्रणाली खेत में ज़रूरत

भर ही पानी देती है। इससे पानी की एक एक बूंद का सही उपयोग होता है। अब बात करें भविष्य में, तो जलवायु परिवर्तन और घटते जल स्रोतों को देखते हुए आने वाले वर्षों में स्मार्ट सिंचाई प्रणाली खेती का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। ये तकनीक किसानों को कम संसाधन में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में मदद कर सकती है। तो किसान भाइयों, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली खेती में नई सोच और नई तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये न केवल पानी की बचत करती है, बल्कि फसल उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में भी योगदान देती है। समय के साथ ऐसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर हम खेती और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। तो किसान साथियों, ये तो बात हुई सिंचाई प्रणाली की। अब रुक करते हैं मौसम की तरफ और आपको बताते हैं आगरा के आसपास के क्षेत्रों का तापमान। तो किसान साथियों, अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आगरा क्षेत्र में आज मौसम गर्म रहने के साथ साथ ही कहीं कहीं आंधी और हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो अब हमारे किसानों को करना क्या है? खेती की नियमित निगरानी करनी है, विशेषकर सब्जियों और बागवानी फसलों की। यदि धान की नर्सरी की तैयारी आप कर रहे हैं, तो खेत की जुताई और मेड़ों की मरम्मत का कार्य तो आप कर ही सकते हैं। पशुओं का भी ध्यान रखना है किसान साथियों। पशुओं के लिए पर्याप्त पीने का पानी और छाया की व्यवस्था आपको रखनी चाहिए। वर्षा होने की संभावना को देखते हुए खेत से अतिरिक्त पानी निकलने की व्यवस्था भी आपको तैयार करनी है। अब आपको क्या नहीं करना है? तो किसान साथी, तेज हवा या आंधी की संभावना के दौरान कीटनाशक या फिर खरपतवार नाशी का छिड़काव ना करें, क्योंकि दवाई उड़कर व्यर्थ हो सकती है। यूरिया या फिर अन्य उर्वरकों का छिड़काव बारिश से ठीक पहले नहीं करना चाहिए। कटाई के लिए तैयार अनाज, भूसा या फिर चारा खुले में तो बिल्कुल भी ना छोड़ें। और दोपहर की तेज गर्मी में खेतों में लंबे समय तक काम करने से बचें, क्योंकि तापमान तो आप देख ही रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। किसान भाइयों, मौसम में बदलाव तो हमेशा से ही बना हुआ है। कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी हो सकती है। ऐसे में फसलों पर रासायनिक छिड़काव फिलहाल आप टाल दीजिए और कटाई की गई उपज को सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। पशु को गर्मी और लू से बचाने के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था आप जरूर करें। किसान साथियों, इस गर्मी के मौसम में आपको अपना, अपने पशुओं का और अपने परिवार का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। तो चलिए, इस जेठ के महीने में सुनते हैं अब ये लोकगीत, जिसे गाया है अर्चना वार्ष्णेय ने।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब भाई? हमारी आशा तो यही रहती है कि आप सब हमेशा की तरह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस तपती गर्मी वाले मौसम में अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। हालांकि साथियों, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कभी कभी मौसम में बदलाव भी देखने को मिलता है। सुबह शाम में कभी थोड़ी बहुत हवा और बारिश से मौसम नम हो जाता है लेकिन दोपहर के चलते फिर वही तपती गर्मी, लू, ये सारी समस्या हम लोगों को होने लगती है साथियों, जिससे बचाव करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और ये बात साथियों हमारे श्रमिक भाइयों को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि हमारे श्रमिक भाई बहन ही ज़्यादातर दिन की कड़ी धूप में गर्म हवाओं के बीच बिना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे काम करते रहते हैं। साथियों, काम करना ठीक है लेकिन बिना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे काम करते रहना, क्या ये सही बात है? नहीं ना। इसलिए साथियों, मौसम चाहे जो भी हो, काम के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का करना चाहिए, खास करके इस गर्मी वाले मौसम में। साथियों, इस गर्मी वाले मौसम में इस गर्म हवाओं और लू से बचाव करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और उसके लिए साथियों, हम कई तरीके से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि इस गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहन सकते हैं। इससे शरीर को एक तो हवा मिलेगी और वहीं दूसरी तरफ गर्मी भी हमें कम लगेगी। वहीं साथियों, घर से बाहर निकलते या धूप में काम करते समय सिर पर टोपी, गमछा या छाते का प्रयोग करने के साथ साथ चेहरे को भी ढककर ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि साथियों दोपहर में ही सबसे ज़्यादा धूप हमारे सिर पर होती है। काम के दौरान बीच बीच में आराम करने के साथ साथ पानी भी ज़रूर पीते रहना।

चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी ना होने पाए और आप अपना काम लंबे समय तक कर सकें। साथियों, खाने की बात करें तो खाने में भारी और तेलीय भोजन से बचना चाहिए, हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए। इसी के साथ आप खीरा, टमाटर, नींबू पानी, लस्सी, छाछ, शरबत आदि भी ले सकते हैं जिससे शरीर में ठंडक भी बनी रहेगी और गर्मी का असर भी आप पर नहीं होगा। साथियों, ये सब उपाय करने से एक तो आप इस भीषण गर्मी में अपना बचाव कर पाएंगे, साथ ही इससे होने वाली शारीरिक परेशानियां जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी या बेहोशी, इन सभी समस्याओं से बच सकेंगे। इस मौसम में साथियों, एक तरफ तो गर्मी हम सभी को परेशान करती है, वहीं दूसरी तरफ तापमान बढ़ने से कीट पतंगे हम सभी को नुकसान पहुँचाते हैं। गर्मी के चलते मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी आदि की संख्या बढ़ने लगती है जिससे खुले स्थानों पर काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहनों को खास करके ज़्यादा परेशानी होती है। इन कीट पतंगों को साथियों इनके नुकसान से बचने और इनकी जो बीमारियां होती हैं जैसे इनके काटने से साथियों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि फैलने का डर रहता है, इसलिए इन सभी से बचाव करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथियों, कीट पतंगों से बचाव के लिए हमें अपने आसपास साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है। इसी के साथ नदी, नाले या बारिश का पानी हमें अपनी छतों या अपने घर के आसपास जमा नहीं होने देना चाहिए। घर में हमेशा भोजन को ढककर रखना चाहिए और खाना खाते समय सबसे पहले हाथों को ज़रूर धोना चाहिए। साथियों, अगर हम इन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो वाकई में हम इस गर्मी के मौसम में और इन कीट पतंगों के दुष्प्रभाव से कई हद तक अपना बचाव कर सकेंगे। साथियों, बात चल रही है इस भीषण गर्मी में कीट पतंगों से राहत पाने की, तो साथ ही साथ बताते चल रहे हैं कि आज ही के दिन यानी कि 6 जून को विश्वभर में मनाया जाता है जिसमें कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने, कीट प्रबंधन प्रौद्योगिकी में हाल के विकास के बारे में विवरण साझा करने और वर्तमान में कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ और कीट पतंगों से होने वाली बीमारी और रोगों के प्रति जागरूक करना है जिससे लोग अपना बचाव करते हुए स्वस्थ और खुशहाली जीवन जी सकें। तो चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। साथियों, आज का हमारा प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको कार्यक्रम के मध्य में देंगे, तब तक बनी रहिए हमारे साथ। और अब हम आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, आज के ज्ञान सागर में हम बताने वाले हैं भारत के एक ऐसे महान राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के होने के साथ साथ असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, और उनका नाम है गोपीनाथ बरदलोई, जिनकी आज के दिन जयंती भी मनाई जाती है। साथियों, गोपीनाथ जी बचपन से ही बड़े ईमानदार, मेहनती और सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने कई सारे आंदोलन अपने जीवन में किए, जिसमें से स्वाधीनता आंदोलन एक था जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, और तब इन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा गया। प्रगतिवादी विचार वाले गोपीनाथ जी ने जीवन भर असम के आधुनिकीकरण के प्रयास के साथ साथ वहाँ के लोगों के लिए काम किया। प्रदेश के प्रति इतनी निष्ठा और लगाव को देखते हुए उनको सम्मानपूर्वक लोकप्रिय अर्थात जनता का प्रिय नेता कहा गया। साथियों, गोपीनाथ बरदलोई जी का राजनीतिक जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भाग लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के भक्त होने के साथ साथ वे गांधी जी के अहिंसा की नीति के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में योगदान दिया और फिर सारा ध्यान देश की सेवा में लगा दिया। साथ ही उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कई सारे आंदोलनों में भाग लिया, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन साथ ही जेल में रहते हुए भी उन्होंने कई सारी पुस्तकें जैसे अन्ना शक्ति योग, श्री राम, हजरत मोहम्मद और बुद्धदेव जैसी पुस्तकें लिखी। साथियों, उनकी इस तरह की महान सेवाओं को सम्मानित करते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके राष्ट्र और समाज के प्रति अमूल्य योगदान का प्रतीक रहा। साथियों, गोपीनाथ बरदलोई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए काम करने में है, और इसीलिए साथियों हमें भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र और ज़्यादा मजबूत बन सके। तो चलिए साथियों, इसी के साथ अब हम आपको बता देते हैं आज के प्रश्न का जवाब। साथियों, आज का प्रश्न हमने पूछा था कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब है 7 जून। जी हाँ साथियों, 7 जून को यानी कि कल के दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा, जिसको मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षित और दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को ये याद दिलाना कि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन हर व्यक्ति का अधिकार है, जो कि

भी है, क्योंकि साथियों सुरक्षित भोजन ही अच्छे स्वास्थ्य की नींव होता है। यदि भोजन दूषित और अस्वच्छ होगा तो इससे हमें कई तरह की शारीरिक परेशानियां जैसे उल्टी, दस्त, पेट के संक्रमण और अन्य बीमारियां भी होने का खतरा पैदा हो जाता है। साथियों खास करके इस गर्मी वाले मौसम में तो इसलिए साथियों हमें सबसे पहले अपने भोजन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमें इस तरह की समस्या ना हो सके। और अगर किसी

0: समस्या ना हो सके। और अगर किसी को इस तरह की समस्या होगी तो कोई बात नहीं, आज के शेयर टिप्स में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ घरेलू नुस्खे जिनका सही उपयोग करके आप कई हद तक इन सभी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। साथियों, इस गर्मी के मौसम में यदि किसी को उल्टी की समस्या हो रही हो तो वे अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर कुछ समय के लिए चबाएं, या फिर अदरक की चाय भी पी सकते हैं जिससे मतली और उल्टी में राहत भी मिल सकती है। वहीं साथ ही उल्टी के दौरान यदि शरीर में पानी की कमी हो रही हो तो उसके लिए आप ORS या नमक चीनी का घोल भी पी सकते हैं। उसके लिए आप 1 लीटर साफ पानी में 6 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिए, इससे शरीर में पानी की होने वाली कमी भी पूरी होती रहेगी। वहीं साथ ही उस तपती गर्मी के मौसम में यदि पेट की गैस और बेचैनी से कोई परेशान है तो उसके लिए पुदीने की कुछ पत्तियां और भुना जीरा पानी में मिलाकर पी सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं और ऐसा करने से आपको पेट की बेचैनी और गैस में राहत मिल सकती है। तो साथियों, ये थी कुछ ज़रूरी सेहत टिप्स जिनका प्रयोग करके आप इस गर्मी के मौसम में होने वाली समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि आज के बदलते समय में हर चीज़ बदलाव की ओर है और हर चीज़ में हमें बदलाव देखने को ही मिलता है, फिर चाहे मौसम हो या फिर आज के समय के छोटे बच्चे ही क्यों ना, उनमें भी हमें बदलाव देखने को मिलता है और ये बदलाव सही और गलत भी हो सकता है। साथ ही बच्चों में सही परवरिश का होना बेहद ज़रूरी है। समय के साथ बच्चों की सही परवरिश कैसे हो और वो कौन कौन से तरीके हैं जिन्हें अपनाकर सही परवरिश बच्चों की जाए, आइए जानते हैं आज की वार्ता के माध्यम से। वार्ता का नाम है परवरिश के बदलते तरीके, जिसके वार्ताकार हैं रिंकू चक्रवर्ती।
1: परवरिश के बदलते तरीके। आज का समय पहले जैसा नहीं रहा, जब बच्चे अपने माता पिता और गुरुजनों से डरा करते थे। आज के बच्चे हाजिर जवाब है, समय बदल चुका है। पहले सिर्फ बच्चों की शारीरिक सेहत पर बल दिया जाता था, पर अब बच्चों पर कई शोध करने के बाद पता चला कि बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य उनकी शारीरिक सेहत जितना ही जरूरी है। हम सोचते हैं कि बच्चों को तनाव नहीं होता, ये परेशानी सिर्फ हम वयस्कों की है, पर असल में ऐसा नहीं है। बच्चों में भी पढ़ाई का दबाव, परीक्षा का डर, करियर की चिंता और माता पिता के अपेक्षाओं पर खरा न उतरने के तनाव शामिल है और ये समस्या आज के समय बढ़ती ही जा रही है। पर इस समस्या का समाधान भी है जिसकी पहल माता पिता को करनी होगी। अच्छे खान पान के साथ बच्चों को सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देना जरूरी है ताकि बच्चे अपनी समस्याओं से अकेले जूझने के बजाय उन्हें अपने माता पिता से साझा करें, अपने मन की बात उन्हें बताएं। बच्चों के साथ माता पिता की नियमितता बोलचाल बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों से बात करें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। अगर बच्चे आपसे कोई बात साझा करते हैं तो उनके ऊपर भरोसा दिखाएं कि आपको यकीन है कि आपका बच्चा कोई गलत काम नहीं करेगा। बच्चों को यकीन दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम उनकी परेशानियों को समझते हैं और उन्हें सुलझाने में उनका साथ देंगे। बच्चों से हमेशा माता पिता की तरह व्यवहार न करके कभी कभी दोस्तों जैसा व्यवहार भी करना इसमें हमारी मदद कर सकता है। उनके शौक का हिस्सा बनकर, उनकी बातें ध्यान से सुनकर, उन्हें अच्छी सलाह देकर हम बच्चों के करीब आ सकते हैं, पर हमें उनकी सामान्य गलतियों नज़रअंदाज नहीं करनी है बल्कि बच्चों को प्यार से उनकी गलती का एहसास कराना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये आगे चलकर बड़ा रूप ले लेगी। इसमें एक और अहम बिंदु ये है कि हमें अपने घर के माहौल को सकारात्मक और शांत रखना होगा, क्योंकि जब बच्चे स्कूल कॉलेज से काम से घर आते तो शरीर और मन दोनों को ही आराम की ज़रूरत है। और घर का माहौल अगर खुश और शांत है तो घर आकर आराम महसूस होगा, नहीं अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, परिवार के लोगों में मनमुटाव रहेगा तो इसका नकारात्मक असर बच्चों पर पड़ेगा। बच्चों को ये समझाएं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, कि सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होते हैं। जीवन में हार जीत लगी रहती है, जरूरी नहीं कि बच्चे

0: हर बार अव्वल आए। बच्चों को हार भी सकारात्मकता के साथ स्वीकारना सिखाना पड़ेगा, पर हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, आज से कल को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहना है। बच्चों में किसी काम को करने की रुचि है भी या नहीं, ये भी देखें। अक्सर हम देखते हैं कि माता पिता जो सपने खुद पूरे नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें पूरा करेंगे। ये बात गलत नहीं है, पर अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोप देना गलत है। आपके कहने पर बच्चा हो सकता है कि आपके बताए रास्ते पर चले, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि उसे वो काम पसंद आए ही या सफलता मिले। बच्चों को उनका करियर चुनने पर दबाव न बनाएं, उन्हें अपनी रुचि अनुसार राह चुनने दें। हो सकता है जो आप सोच बैठे हैं आपका बच्चा उससे भी कोई अच्छा काम कर जाए और सबके लिए मिसाल बन जाए। बच्चों पर भरोसा दिखाएं। हाँ, उन्हें जो राह अपने लिए चुनी है उसमें वो सफल होंगे ही, बशर्ते उन्हें ईमानदारी के साथ बड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। साथ ही बच्चों को अनुशासन सिखाना भी बहुत ज़रूरी है। आज वैसे ही बच्चों पर पढ़ाई और परीक्षाओं का बहुत दबाव है, फिर घर में माता पिता भी हर समय बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं। पर हम सभी को ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या कोई भी व्यक्ति पूरे दिन एक ही काम कर सकता है? उत्तर होगा नहीं। हम लोग भी काम करते करते थक जाते हैं और अंतराल चाहिए होता है। वैसे ही बच्चों को भी पढ़ाई से अंतराल देने चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पर पढ़ाई के साथ ही बच्चों के शारीरिक मानसिक सेहत भी ज़रूरी है। याद कीजिए अपने दिनों को जब आपके माता पिता आपको पढ़ने के लिए कहते होंगे, पर आपका दिमाग सिर्फ खेल में लगता था। वैसे ही आपके बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा समय खेलने कूदने और घूमने को भी दें। पर हाँ, आजकल के बच्चों में फ़ोन की लत थोड़ी ज़्यादा हो गई है, या फिर यूँ कहे कि हमें फ़ोन की लत लग गई है, क्योंकि बच्चे हम ही से तो सीखते हैं। बच्चों का पहला स्कूल और गुरु उनके अभिभावक ही होते हैं। बच्चों में अच्छे बुरे व्यवहार और आदतों की नींव घर से ही पड़ती है। हमें उनके सामने अपनी छवि को मजबूत और संवेदनशील दिखाना है। जो गुण उनके अंदर चाहते हैं, पहले उन गुणों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करना होगा। अगर हम अपना व्यवहार सही रखेंगे, अपने काम को लेकर अनुशासित रहेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, बच्चों बखुद हमें देखकर प्रेरित होंगे। साथ ही कभी कभार बच्चों के साथ खुद को भी बच्चा बनना पड़ेगा। उन्हें पढ़ाई से छुट्टी देकर उन्हें कहीं घुमाने ले जाना, उनके साथ समय बिताना, खेलना, कूदना, बातें करना, उनके नज़रिए को समझना, उनके दोस्तों की बातें करना। इसका एक और फ़ायदा ये होगा कि आपका बच्चा अपने दोस्तों के बारे में बताएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि आपका बच्चा कैसी संगति में है। बच्चों को सबके सामने डांटे नहीं, चाहे वो दोस्त हो या रिश्तेदार। जैसे बच्चे की गलती पर उन्हें समझाया जाता है, वैसे ही कोई अच्छा काम करे तो उनकी तारीफ करें, उन्हें उपहार दें। साथ ही बच्चों को अच्छी आदतों के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे संतुलित आहार, व्यायाम, समय पर जागने और सोने की नियमितता और भावनात्मक स्थिरता। अगर आपको लगता है कि तमाम बातों को ध्यान में रखने के बावजूद भी आपका बच्चा तनाव से नहीं निकल पा रहा है, तो हो सकता है कि उसकी समस्या गंभीर हो। ऐसे में घबराएं नहीं और किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लेकर समस्या का समाधान खोजें। यदि आप बच्चों के अभिभावक के साथ साथ दोस्त भी बन जाते हैं, तो बच्चा हमेशा आपकी बात सुनेगा और मानेगा। उसके साथ बातें करें, खेले कूदे, गप्पे मारे, पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तकें दे, शिक्षाप्रद कहानियाँ पढ़ें और उसे सुनाएं। इन छोटे छोटे उपायों से आपका बच्चा अच्छे रास्ते पर चलेगा और आपका नाम रोशन करेगा।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता परवरिश के बदलते तरीके, जिसकी वार्ताकार थी रिंकू चक्रवर्ती। और साथियों, अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिकों द्वारा की जाने वाली नई खोज की। ये साथियों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि आज के इस आधुनिक युग में हर रोज़ कोई ना कोई नई खोज हमारे सामने आती है।

और आज हम जिस वैज्ञानिक खोज के बारे में बात कर रहे हैं वो वाकई में हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। जी हाँ साथियों, आज के समय में वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे पावर ग्लव्स तैयार किए हैं कि जिनको हाथ में पहनने से मजदूर के हाथों की ताकत और पकड़ दोनों ही मजबूत हो जाती है। साथियों मतलब कि अगर कोई श्रमिक भाई उन ग्लव्स को पहनकर अपने हाथों से कोई भारी चीज़ उठाएंगे तो उनके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो चीज़ उनके हाथों से छूटेगी नहीं और आए दिन होने वाली चोटों का खतरा भी कम होगा। तो इन साथियों फ़ायदे की ये बात, तो चलिए साथियों इसी बात के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं ये मधुर गीत।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 7 बजने को है, अब समय है हिंदी में समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नवन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली है और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं

0: ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में आर्थिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो और 15 और 20 किलो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड़ तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 2 शतकीय पारी खेली। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानी पूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। मौसम विभाग ने केरलम और माही में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the Economic Advisory Council discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soya bean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil, rice bran oil, cottonseed oil and corn oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kgs, 15 kg and 20 kg. In Madhya Pradesh, both the BJP candidates, Party National General Secretary Tarun Chugh and Rajnish Agarwal filed their nominations for the Rajya Sabha elections today. The nomination papers were submitted before the returning officer at the Bhopal Assembly. Senior party leaders, Chief Minister Dr. Mohan Yadav, BJP State President Hemant Khandelwal and Minister Kailash Vijayvargiya were among those present on the occasion. Congress has fielded former Mandsaur MP Meenakshi Natarajan as its candidate. The last date for filing of nominations for 3 Rajya Sabha seats from Madhya Pradesh is 8th of June. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will hold talks with Nepal Foreign Affairs Minister Shishir Karnal in New Delhi this evening. The Foreign Affairs Ministry of Nepal

0: said during the meeting both sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas, including trade, investment, connectivity, energy, and people-to-people ties. Meanwhile, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the visit will further strengthen the special partnership between India and Nepal.
1: With Nepal, we have an expansive agenda from development cooperation to people-to-people ties to trade and investment. So all these ties together will be discussed when the two foreign ministers meet. But on our side, we are keen to further strengthen this multifaceted partnership that we have with Nepal.
0: Union Minister for Youth Affairs and Sports Mansukh Mandaviya today said that India's youth are the biggest strength of the country and will play a leading role in realizing the vision of Viksit Bharat by 2047. Addressing the Youth for Viksit Bharat, My Bharat Youth Convention in New Delhi, the minister said My Bharat was created by Prime Minister Narendra Modi as a platform for youths to share their aspirations, ideas and volunteer spirit for nation building. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the mishap in Ferozpur district of Punjab. In a social media post, the Prime Minister conveyed his condolences to the families who lost their loved ones. He wished a speedy recovery for those injured in the accident. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. In hockey, the Indian men's team has lifted the Under-18 Asia Cup for the third time, thrashing hosts Japan 4-1 in the final in Kakamigahara today. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian men's Under-18 hockey team on winning the Asia Cup 2026. In a social media post, Mr. Modi said the team displayed exceptional skill and teamwork throughout the tournament, culminating in a memorable victory in the final. He said it is a splendid accomplishment by the young hockey players. The Prime Minister said this triumph also reflects hockey's growing popularity among the youth. He conveyed best wishes to the team for their future endeavours. And that is the end of this news bulletin.
2: Medium wave 196.1 meter, arthat 1530 kilohertz. और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता। विषय है जीव जंतुओं में भी होती है संवेदना, और वार्ताकार है डॉक्टर नवीन शर्मा।
3: संवेदना का अर्थ इंद्रियों द्वारा किया गया अनुभव है। यह जीव की उत्तेजक के प्रति सचेतन प्रतिक्रिया होती है। प्रमुख रूप से संवेदना 3 प्रकार की होती है। पहली को विशेष संवेदना कह सकते हैं। यह जीव जंतु के विशेष अवयव से होने वाली इंद्रिय संवेदना है। यह प्राय सूंघने, जिह्वा के स्वाद, त्वचा, देखने और सुनने से होती है। शेर की दहाड़ और हाथी के चिंगाड़ को वन्य जंतु अच्छी तरह पहचानते हैं। प्रत्येक जीव जंतु की अपनी ध्वनि होती है, जिसके द्वारा वे एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। प्रकृति ने 2 प्रकार के जीव बनाए हैं, एक शाकाहारी और दूसरे मांसाहारी। शाकाहारियों में बच्चों को स्तनपान से लेकर खाद्य पदार्थों, पेड़ पौधों व घास की पहचान तक नेत्र और ग्रहण शक्ति क्रियाशील रहती है। जैसे हाथी व बंदर का केले, रीछ का शहद के प्रति लगाव इसी संवेदना के अंतर्गत आता है। शेर के आने व संकट की सूचना बंदर एक विशेष ध्वनि से देकर सारे जानवरों को सचेत कर देते हैं। दूसरी संवेदना जीव जंतुओं के शरीर व अवयवों द्वारा किया गया अनुभव है। जैसे तीर, तलवार या गोली का आघात वन्य पशुओं में वेदना, चीख, चित्कार के रूप में व्यक्त होता है। जब जंगल में दावाग्नि लगती है तो पशु पक्षियों को इसका पूर्व ज्ञान हो जाता है। उनमें सुरक्षित स्थान के लिए भगदड़ मच जाती है। भूकंप, तूफान आदि का बोध वन्य पशुओं विशेषकर सर्प को पहले हो जाता है। वे इस संकट की सूचना अपने समान धर्माओं को विशेष ध्वनि से पहुंचाते हैं। इस वर्ग की संवेदना में भूख और प्यास का अनुभव आता है। शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन और पानी की खोज में स्थान बदलते हैं। तीसरी स्नायु संबंधी

संवेदना होती है। प्रेम और घृणा का अनुभव इसी के अंतर्गत आता है। प्रायः देखा गया है पशु में प्रेम काम भावना नफरत प्रतिद्वंद्वात्मक हिंसा का भाव काफी तीव्र होता है। कामातुर मादा द्वारा नर का आह्वान एक विशेष ध्वनि द्वारा किया जाता है जिससे दूरस्थ नर दौड़कर मादा के पास आ जाता है। प्राय समूह पर अधिकार करने या मादा के आकर्षण में नरों में परस्पर संघर्ष हिंसा इसी संवेदना के अंतर्गत आती है। कामातुर मादा द्वारा नर का आह्वान एक विशेष ध्वनि द्वारा किया जाता है जिससे दूरस्थ नर दौड़कर मादा के पास आ जाता है। प्राय समूह पर अधिकार करने या मादा के आकर्षण में नरों में परस्पर संघर्ष हिंसा इसी संवेदना के अंतर्गत आती है। जीवों में सामूहिकता की भावना व चेतना होती है। शाकाहारी जीव प्राय समूह में रहते हैं। जलवायु उन्हें सबसे अधिक प्रभावित करती है। यह प्रभाव दो तरह से पड़ता है, प्रलय या विपत्तिजनक कारण जैसे आंधी बाढ़ सूखा भूस्खलन तूफान या ज्वालामुखी का फटना। इन प्रलयकारी और विनाशकारी दुर्घटनाओं में जीव जंतु वैसे ही प्रभावित तथा पीड़ित होते रहते हैं जैसे मानव जाति होती है। यह प्रभाव दो तरह से पड़ता है, प्रलय या विपत्तिजनक कारण जैसे आंधी बाढ़ सूखा भूस्खलन तूफान या ज्वालामुखी का फटना। इन प्रलयकारी और विनाशकारी दुर्घटनाओं में जीव जंतु वैसे ही प्रभावित तथा पीड़ित होते रहते हैं जैसे मानव जाति होती है। मानव ने अपने और जीवों के संकट में डालने वाले ऐसे संकट पैदा कर रखे हैं। दूसरे ध्वंसकारी कारक धीरे धीरे घटने वाले होते हैं जैसे मानवों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मिट्टी का क्षरण वन्य संसाधनों का नाश जैसे धरती का बंजरपन आदि। जीव जंतुओं द्वारा संवेदनात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कारक उनके वास स्थान का विनाश अपने वास स्थान पर जीव व जंतु नैसर्गिक रूप से क्रियाकलाप तथा क्रियाएं करते हैं। वहां प्रकृति और जलवायु के साथ उनका अनुकूलन उनकी प्रजाति के संवर्धन में सहायक होता है। किंतु आज मानव जनित समस्याएं जैसे जंगलों के कटाव वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जल प्रदूषण से उनके समान प्रकृति वासियों को प्रभावित कर रहे हैं। वहां प्रकृति और जलवायु के साथ उनका अनुकूलन उनकी प्रजाति के संवर्धन में सहायक होता है। किंतु आज मानव जनित समस्याएं जैसे जंगलों के कटाव वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण जल प्रदूषण से उनके समान प्रकृति वासियों को प्रभावित कर रहे हैं। रेलों द्वारा हाथी व चीतों की मौत इन्हीं कारणों से हुई है। जीवों के बीच होने वाली आपसी संघर्ष परजीवी और परभक्षियों से अपनी रक्षा के प्रयास ने उन्हें अपने वास स्थान बदलने को विवश कर दिया है। आज के अभिशाप जैसे ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल में होने वाले बदलावों से जीव जंतु तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। उनके कारण सूखा पड़ रहा है, कीट खरपतवार और बीमारियां बढ़ रही हैं। हरित पट्टिकाओं के सिकुड़ने से अपरदन और मृदा के क्षरण से जल की कमी होने लगी है। अम्ल वर्षा से पौधों में विषैले प्रभाव जीवों की सांस लेने की क्रिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहरों और नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है।

कार्यक्रम विविधा में अभी आपने सुनी डॉक्टर नवीन शर्मा से वार्ता। विषय था जीव जंतुओं में भी होती है संवेदना। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।

कादर कामिल बुल्के के शब्दों में राष्ट्रीय अखंडता सांस्कृतिक एकता और आपसी सद्भाव के लिए केवल एक ही संपर्क भाषा है और वो है हिंदी।

स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार हिंदी के माध्यम से सारे भारत को एकता के धागे में पिरोया जा सकता है।

0: मंच में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां, कहा 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा से कुल 516 करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें कटरा विधानसभा क्षेत्र में 256 करोड़ रुपए और करनैलगंज में 260 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 9 वर्ष में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है कि प्रदेश की नई पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास विजन के तहत सरकार बिना भेदभाव घर घर तक विकास योजनाएं पहुंचा रही है।
1: हर पात्र व्यक्ति को, वह किसी जाति का हो, किसी मत संप्रदाय का हो, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उसको योजना का लाभ दिया जाएगा। और यही तो मोदी जी ने कहा था, सबका साथ और सबका विकास।
0: इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सुबह तुलसीपुर में देवी शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन पूजन किया और मां से सुखी, स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: इस बीच 3 दिवसीय दौरे पर कल लखनऊ पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दौरे के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने हरदोई रोड स्थित मिलेनियम पैलेस में पश्चिम मंडल 2 के प्रबुद्ध नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ संवाद बैठक की। केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास तीर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। श्री चौधरी ने जनपद के प्राचार्य एवं शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में सहभागिता भी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण, रोजगारपरक एवं तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत तथा नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्रत्येक परिवार तक शीघ्रता से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वाराणसी में आयोजित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री श्री शर्मा ने योजना की प्रगति, उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की विस्तार से समीक्षा की। एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और प्रोत्साहन से देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा और प्रोत्साहन से पूरे देश में सोलर रिवोल्यूशन हो रही है, सौर क्रांति हो रही है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा लगभग 2 साल पहले की गई थी और उस योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश में काम हो रहा है। उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी हम लोग पीएम सूर्य घर को लेकर के प्रगति कर रहे हैं।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। मीडिया से बातचीत में श्री राजभर ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, इसलिए वो इतने लंबे समय तक शासन करने वाले प्रधानमंत्री बने हैं।
3: मोदी जी पर देश के 140 करोड़ जनता विश्वास कर रही और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया। 10 जून को 12 साल कार्यकाल पूरा उनका होगा और देश में आजादी के बाद पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे जो लगातार लंबे समय तक देश में शासन करने वाले प्रधानमंत्री गिने जाएंगे।
0: प्रदेश में सिविल, पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के अनुसार आज परीक्षा की तैयारियों का पूर्वाभ्यास किया गया। इसी क्रम में अमरोहा में आज जिलाधिकारी डॉ नितिन गौड़ एवं पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने परीक्षा की तैयारियों को परखा। कानपुर में प्रशासन ने व्यवस्थाओं को लेकर गोष्ठी आयोजित की। साथ ही रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिवहन निगम रियायती दरों पर परीक्षार्थियों को सेवा उपलब्ध कराएगा। वाराणसी में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के सफल समापन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज वाराणसी में दीनदयाल हस्तकला संकुल का दौरा किया। सदस्यों ने यहां भारतीय

0: शिल्प और हथकरघा की समृद्ध विरासत को दर्शाने वाले संग्रह को देखा। इससे पूर्व प्रतिनिधिमंडल ने भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का भ्रमण किया। बौद्ध तीर्थस्थल के दर्शन के दौरान प्रतिनिधि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से प्रभावित नजर आए। ब्राजील से आए प्रतिनिधि लुकास ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद प्रेरणादायक और अविस्मरणीय रहेगा। प्रतिनिधियों ने बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि इस भ्रमण का उद्देश्य विदेशी प्रतिनिधियों को भारत की वास्तविक सांस्कृतिक धरोहरों और जीवंत परंपराओं से रूबरू कराना है।
1: ब्रिक्स मीटिंग, उसमें कई सारे ट्रैक्स होते हैं, उसमें ट्रेड है, एनवायरनमेंट है, कल्चर इज आल्सो वन ऑफ द ट्रैक ऑफ ब्रिक्स मीटिंग्स। तो कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है और कल्चर के हम बातें तो करते हैं मीटिंग में, जब तक दिखाएंगे नहीं तो उनको शायद उतना समझ में नहीं आए। हम चाहते हैं कि हम जो भी कल्चर के बारे में बात करते हैं उसको हम दिखाएं भी।
0: अयोध्या के श्रीराम मंदिर परिसर में स्थित शेषावतार मंदिर के शिखर पर 23 जून को ध्वजा स्थापना होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।
2: प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उनके करकमलों के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न होगा और इसके लिए जो है कार्यक्रम की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। लोगों को निमंत्रित किया जा रहा है और यह संख्या भी जैसा बताया गया ट्रस्ट के द्वारा 3000 से ऊपर संख्या होगी और हम सब उसके साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब यह शेषावतार का जो मंदिर है, जो शिखर है, वह बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद अब उस पर ध्वजारोहण होने जा रहा है।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज प्रयागराज में वाराणसी विंध्याचल एवं प्रयागराज मंडल की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज सर्वाधिक अनाज उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में 516 करोड़ रुपए की 262 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, बिना भेदभाव के सरकार पहुंचा रही है योजनाओं का लाभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया भर में छाई आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक आर्थिक शक्ति में बदलाव भारत। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने आज महाराजगंज में गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां। कहा, पिछले 12 वर्षों में देश में हुआ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन। और वाराणसी में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति सम्मेलन के बाद विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने आज भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ का किया भ्रमण। समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के अनुभव को बताया अविस्मरणीय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
4: मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
5: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे डिकोडिंग साइंस, आखिर विज्ञान के पीछे का विज्ञान क्या है विषय पर वार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
6: धन्यवाद प्रवीण। आइए सुनते हैं विज्ञान समाचार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अपने मेवन अंतरिक्ष यान के मिशन के समाप्त होने की घोषणा की है। लगभग 6 महीने तक कोई संपर्क नहीं होने के बाद नासा ने पुष्टि की कि एक दशक से अधिक समय तक चले इस मिशन का अंत हो गया है। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मेवन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। पिछले वर्ष दिसंबर में मंगल ग्रह के पीछे जाने के बाद यान से संपर्क टूट गया था। जांच में पता चला कि यान तेजी से घूमने लगा, जिससे उसकी कक्षा प्रभावित हुई और बैटरियां खत्म हो गईं। नासा की समीक्षा समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि अंतरिक्ष यान को दोबारा द्वारा सक्रिय नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले 50 से 100 वर्षों तक

मंगल की कक्षा में बना रहेगा, जिसके बाद ग्रह की सतह से टकरा जाएगा। देश में जल संसाधन के प्रबंधन में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जल संसाधन

वीडियो वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। समय हुआ है 7:31। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश और मैं हूं आज के प्रोग्राम का मेजबान अली। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हम सभी के जीवन से प्रतिदिन जुड़ा हुआ है लेकिन जिस पर अक्सर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना दिया जाना चाहिए। जरा सोचिए जब हम भोजन की थाली अपने सामने देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद खुशबू और पेट भरने की संतुष्टि। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो वास्तव में सुरक्षित भी है या नहीं? इसी महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर और जागरूकता के लिए हर वर्ष 7 जून यानी कल विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है।

दोस्तों, भोजन केवल हमारी भूख मिटाने का साधन नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, विकास और जीवन की गुणवत्ता का आधार भी है। लेकिन यदि भोजन दूषित हो, उसमें हानिकारक जीवाणु, रसायन या विषैले तत्व मौजूद हो, तो वही भोजन बीमारी का कारण भी बन सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया में हर वर्ष करोड़ों लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं। इनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि खाद्य सुरक्षा आज केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का भी महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है। श्रोताओं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि भोजन की सुरक्षा केवल सरकारों या खाद्य उद्योगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हम सभी की भूमिका है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि भोजन उत्पादन से लेकर उपभोग तक हर चरण में सुरक्षित रहें, यानी खेती में सुरक्षित उत्पादन हो, भंडारण सही तरीके से हो, परिवहन स्वच्छ हो, खाद्य प्रसंस्करण वैज्ञानिक मानकों के अनुसार हो और अंत में उपभोक्ता भी भोजन को सही तरीके से संभाले और उपयोग करे। यदि इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी लापरवाही होती है तो भोजन दूषित हो सकता है।

दोस्तों, आज के समय में मिलावट और अस्वस्थ खाद्य पदार्थ भी एक बड़ी चुनौती है। कई बार अधिक मुनाफा कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट कर दी जाती है। दूध में पानी, मसालों में रंग, मिठाइयों में कृत्रिम रसायन और सब्जियों और फलों पर अत्यधिक कीटनाशकों का प्रयोग, ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ केवल तत्काल बीमारी ही नहीं बल्कि लंबे समय में कैंसर, किडनी की समस्या, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए जागरूक उपभोक्ता बनना हमारे लिए बेहद आवश्यक है।

दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हम अपने स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं। आइए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय जानते हैं। सबसे पहले भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें। फल और सब्जियों को उपयोग से पहले साफ पानी से धोएं। कच्चे और पके हुए भोजन को अलग अलग रखें। भोजन को उचित तापमान पर पकाएं और सुरक्षित तरीके से संग्रहित करें। बासी भोजन का सेवन करने से बचें। पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनके निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अवश्य जांचें। और सबसे महत्वपूर्ण साफ सफाई को अपनी आदत बनाइए। ये छोटे छोटे कदम हमें हमारे परिवार को अनेकों बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संस्था खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करती है, निरीक्षण करती है और उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए विभिन्न अभियान चलाती है। ईट राइट इंडिया जैसे अभियान लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन किसी भी व्यवस्था की सफलता तभी संभव है जब नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों को समझें।

दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का संबंध केवल स्वास्थ्य से नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा और खाद्य उपलब्धता से भी जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में भी सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को विशेष महत्व दिया गया है। याद रखिए, सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। स्वस्थ नागरिक ही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। तो दोस्तों, आइए इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम सब मिलकर एक जागरूक और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित भोजन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इसी संदेश के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। एक 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म में गीतों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म अमर प्रेम से। संगीत दिया था आर डी वर्मन ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। अगली प्रस्तुति फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से है, जिसके रचनाकार हैं पंडित नरेंद्र शर्मा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और आवाज दी है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भजन संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म तेरे मेरे सपने से है, जिसे लिपिबद्ध किया है नीरज ने, संगीत दिया है एस टी बर्मन ने और आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

आशा जी ने मेरे सैकड़ों हिट गाने गाए हैं, जिनमें से कई गानों पर आशा जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड भी मिले हैं। ये मेरी ही आशा नहीं, सारी दुनिया के अनगिनत संगीत प्रेमियों की आशा है कि आशा जी की सुरीली आवाज़, इनकी गायकी, इनकी पॉपुलैरिटी इसी तरह दिन पर दिन उन्नति के शिखर पर चढ़ती जाए। आशा जी एक महान कलाकार हैं और मैं इनकी कला व इनके बिहेवियर से कितना प्रभावित हूँ ये आशा जी खुद जानती हैं, इनका मन जानता है।

ये भक्ति गीत हमने फिल्म काजल से लिया था। इस गीत के संगीतकार थे रवि, गीत साहिर का था और आवाज थी आशा भोसले की। 196.1 मीटर पर आप आनंद ले रहे हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम भजन संध्या में। कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हमने लिया है शर्मा बंधु की आवाज से सजे इस भक्ति गीत को फिल्म परिणसी। संगीतकार हैं आर डी वर्मन और गीतकार हैं रामानंद शर्मा।

अभी आपने सुना कार्यक्रम भजन संध्या 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब समय है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत का, जिसमें आप न सिर्फ संगीत का आनंद लेंगे बल्कि अपने देश के बारे में जानेंगे कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, भारत एक विशाल राष्ट्र है, यहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, भारत विश्व का 24वां देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है।

दोस्तों, दुनिया के प्राचीन शहरों में से काशी पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। बनारस या वाराणसी का पवित्र शहर सनातन काल से ही बसा हुआ है। इतिहासकारों की माने तो तकरीबन 3 से 4 हजार वर्ष पहले यह शहर बसा था, किंतु हिंदू पौराणिक कथा और ग्रंथों के अनुसार ये प्राचीन शहर भगवान शिव से लगभग 5 हजार वर्ष पहले इस पवित्र शहर की नींव रखी गई थी।

बीते हुए भारत में स्वर्ण मंदिर में नस्ल, धर्म और वर्ग को किनारे करके प्रतिदिन 50,000 से ज्यादा आगंतुकों को शाकाहारी भोजन कराया जाता है।

अभी आपने सुना फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर

0: बना है।
1: collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनान ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6

0: स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under-18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze. Prime Minister Narendra Modi chaired a meeting today with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister on economic and related issues. Besides the EAC members, two principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikanta Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said, under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils including palm oil, palmoline, soybean oil, sunflower, mustard, groundnut, sesame and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 grams, 500 grams, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will also benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnav has said resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Shubhendu Adhikari at Navarno in Kolkata, Mr. Vaishnav said 14,205 crore rupees has been allocated to West Bengal in the railway budget for 2026-27. He said 10

0: Shubman Gill put the hosts in a strong position. In tennis, 8-seeded Mira Andreeva of Russia won her maiden Grand Slam title after getting the better of Maja Szwalinska of Poland in straight sets in the women's singles final of the French Open. It was a dominant display by the 19-year-old, defeating Szwalinska 6-3, 6-3 to secure a memorable victory. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Kerala and Mahe tomorrow. Heavy rainfall conditions are expected over most parts of northeast India, interior Karnataka, Goa, Tamil Nadu, Puducherry and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jaishankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Karnal in New Delhi, says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards U.S. military facilities in Kuwait and Bahrain. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क के मौशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मियारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में यकसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ मीटिंग की सदारत की। वज़ीर-ए-आज़म और इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल ने आलमी उथल पुथल के दौर में भारत की मुआशी तरक्की को मजीद फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ इकदामात और तजवीज़ों पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रहन सहन में सहूलत और कारोबार करने में सहूलत को और ज्यादा बेहतर बनाने की खातिर मुख्तलिफ असलाहत पर भी गौर किया गया। अरकान ने भारत और दुनिया पर मगरबी एशिया मुहाजराई के असरात के ताल्लुक से अपनी अपनी राय का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज की इस मीटिंग में भारत की इक्तिसादी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा मीटिंग के शुरका ने इस्लाहात के सफर में और तेजी लाने, नीज रहन सहन और कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाने के बारे में भी अपने अपने नुक्ते नजर पेश किए। इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल एक आजादाना इदारा है जो इक्तिसादी और मुतालिका मामलात पर भारत सरकार खास तौर पर वजीर आजम को सलाह देता है। आज की मीटिंग में इक्तिसादी सलाहकार कौंसिल के अरकान के साथ साथ वजीर आजम के दो प्रिंसिपल सेक्रेटरियों डॉक्टर पी के मिश्रा और शक्तिकांत दास ने भी शिरकत की। मरकज ने वजन से मुतालिक कानूनी फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल के लिए पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है, जिससे मार्केट में और ज्यादा शफाफियत और यकसानियत आ सकेगी। सारिफीन के उमूर के महकमे ने मजकूरा फ्रेमवर्क के तहत खुर्दनी तेल और फैट्स के लिए मजमुई मकदार और पैकेट के मयारी साइज का तायुन करने से मुतालिक तरीक़ाकार में तरमीम की है। सारिफीन के उमूर खुराक और तकसीम आमा महकमे की वजारत ने कहा है कि नजरसानी शुदा जब्तों के तहत बड़े खुर्दनी तेलों के लिए पैकेट के मयारी साइज तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें पाम ऑयल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल

0: तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मकई का तेल शामिल है। खुरदनी तेल के मंजूर शुदा पैकेट 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से लेकर 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम तक के होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक सड़क हादसे में लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इस हादसे में हलाक होने वालों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका रोड पर एक कुनबे के लोगों को ले जाने वाली एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 9 अफराद की मौत हुई जबकि 22 जख्मी हो गए। ये लोग अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को दरियाए ब्यास में सुपुर्दे आप करने के लिए जा रहे थे। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज कहा है कि भारत के नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हैं और ये 2047 तक विकसित भारत के विजन की तकमील में नुमाया रोल अदा करेंगे। नई दिल्ली में यूथ फॉर विकसित भारत माई भारत यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए जनाब मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माई भारत की तश्कील के जरिए नौजवानों को अपनी उमंगों, ख्यालात और मुल्क की तामीर के लिए रजाकाराना जज्बे के इजहार के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मुल्क की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस तरह भारत सबसे ज्यादा नौजवान आबादी वाले ममालिक में से एक है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। इस देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल अपनी तबील और मुनफरिद एतबार से खुली सरहद से मुत्तसल इलाके में सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी तालमेल कायम रखते हैं और दोनों मुल्क जरूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल के साथ मीटिंग के आगाज पर अपने इजहार ख्याल में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और नेपाल के बहुत खसूसी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि ये रिश्ते अवाम से अवाम के मजबूत राब्तों, सरहद के दोनों तरफ कनेक्टिविटी और मुश्तरका सकाफती और मजहबी रिवायात की मजबूत बुनियाद पर कायम है। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के दो उम्मीदवारों, पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कागजात नामजदगी भोपाल असम्बली में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए गए। कांग्रेस ने मंदसौर की साबिक पार्लिमानी रुकन मीनाक्षी नटराजन को अपने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए नामजदगियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून है। हुनरमंदी की तरक्की और एंटरप्रेन्योरशिप के वजीर जनाब जयंत चौधरी ने आज नई दिल्ली के कौशल भवन में मुलाजमीन के बच्चों की देखभाल के लिए एक नई डे केयर सहूलत का इफ्तिताह किया। वजारत के मुताबिक ये इकदाम और ज्यादा शमूलियत वाला, हमदर्दाना और अवाम पर मरकूज काम का माहौल कायम करने के तई एक नुमाया पहल है। तकरीबन 600 मुरब्बा मीटर में फैले इस मरकज का मकसद एक खुशगवार, महफूज और साजगार माहौल फराहम करना है जहां बच्चे सीखें, खेलें, आराम कर सकें और बेहतर नशोनुमा हासिल कर सकें। ईरान ने आज कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे, जिसके बाद खलीज के मुल्कों और अमरीकी फोर्सेज ने तालमेल के साथ फिजाई दिफाई कार्रवाई की। इस तरह मगरबी एशिया के खत्ते में कशीदगी फिर तेजी के साथ बढ़ गई है। अमरीका की मरकजी कमान के मुताबिक आबनाए हुरमुज के नजदीक ईरान की साहली निगरानी और रडार तनसीबात पर अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इब्तदाई जायजे से यह इशारा मिलता है कि 6 मिसाइलों को बीच

0: में ही रोक दिया गया, जबकि सातवां मिसाइल अपने निशाने पर नहीं पहुंच सका। अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान के ताल्लुक से कोई फौरी इत्तला नहीं मिली है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी एशिया का तनाज़ा उस वक्त एक नए खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया जब ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात की तरफ बैलिस्टिक मिज़ाइल्स दागे। ताहम खलीजी और अमरीकी फजाई दिफाई निज़ाम ने बेशतर ईरानी मिज़ाइलों को नाकाम बना दिया, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन सरगर्मियों की इत्तला मौसूल होने के बाद अमरीका की जानिब से आबनाए हुरमुस के करीब कैशम जजीरे और गोरख में ईरानी राडार और निगरानी के मरकज को निशाना बनाए जाने के चंद घंटे बाद ये हमले हुए। वाकयात ने नाजुक सिफारती कोशिशों को मुतासिर किया है और दुनिया के अहम तरीन तवानाई की गुजरगाहों में से में बहरी हिफाजत के हवाले से खदशात में इजाफा हुआ है। इस दौरान लबनान में अमरीका की हिमायत से होने वाली जंगबंदी को एक और धचका उस वक्त लगा जब इसराइली फजाई हमले में जुनूबी लबनान में एक लबनानी फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शबाना बेगम।
0: हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप तीसरी बार जीत लिया है। काकामी गहारा में खेले गए फाइनल में भारत ने जापान को 1-4 से शिकस्त दी। भारत की तरफ से आशीष पूर्ति ने 3 गोल किए, जबकि 1 गोल कप्तान केतन कुशवाहा ने किया। इधर भारत की खवातीन टीम ने जनूबी कोरिया को 3-0 से हराकर कांसी का तमगा जीता। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीतने पर भारतीय मर्दों की टीम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में गैर मामूली महारत और टीम वर्क का मुजाहरा किया और इसके नतीजे में फाइनल में यादगार जीत हासिल हुई। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने कांसे का तमगा जीतने पर 18 साल तक की उम्र की खिलाड़ियों की भारतीय खवातीन टीम को भी मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे शतरंज टाइटल जीतने पर आर प्रगनंदा को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस शानदार संगे मील से उनकी लगातार उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। वजीर आजम ने उनके मुस्तकबिल के खेल मुकाबलों के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इधर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी परगनंदा को मुबारकबाद दी है। 19 साल श्वेता श्री भास्कर ने मंगोलिया के शहर उलान बातर में खवातीन की एशियाई इन्फिरादी शतरंज चैंपियनशिप जीत ली है। इस कामयाबी के साथ ही श्वेता ने 2027 के फिडे खवातीन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। गोवा के शहर मडगांव में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 1-3 से हरा दिया। इस तरह भारत ने छठी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीती है। आज अहमदाबाद में आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत के रोहन त्यादे ने सोने का तमगा जीता। उन्होंने लड़कों के सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल मुकाबले में यह कामयाबी हासिल की। आलमी दर्जे के इस योग मुकाबले में भारत अब तक सोने के 6 तमगों समेत मजमुई तौर पर 7 तमगे जीत चुका है। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के खिलाफ वाहिद क्रिकेट टेस्ट के आज पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग्स में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो कप्तान शुभमन गिल 103 रन पर और ऋषभ पंत 50 रन पर खेल रहे थे। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। साई सुदर्शन ने 81 रन स्कोर किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल साहली कर्नाटक, केरलम और माही में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। उधर शुमाल मशरकी भारत के बेशतर हिस्सों, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार जजायर में भी अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कल मशरकी राजस्थान और जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी पेशगोई की है। दूसरी तरफ साहली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कल शदीद गर्मी के हालात रहने का इम्कान है। सिंगापुर सरकार ने सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म्स को हुक्म दिया है कि वो उन 14 पोस्ट्स को ब्लॉक कर दें जिनके बारे में यह ख्याल है कि ये चीन से शुरू हुई हैं। इन पोस्ट में मुबैना तौर पर भारतीय बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया गया है और कसीर सकाफती निज़ाम के सिंगापुर के मॉडल को कमजोर करने की कोशिश की गई है। पुलिस ने यूट्यूब, फेसबुक और एक्स को हिदायत जारी की है कि वो सिंगापुर के लोगों को इस तरह के मवाद तक रसाई हासिल करने से रोकने के लिए तमाम जरूरी

इकदाम करें। यूक्रेन के बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों में आज सुबह रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग के बाशिंदों से घरों के अंदर रहने को कहा गया। इस हमले से ये बात उजागर हुई है कि रूस के अंदरूनी इलाके तक हमला करने की यूक्रेन की सलाहियत में इजाफा हो रहा है। इस हमले से एक दिन कबल रूस के सदर व्लादिमिर पुतिन ने यूक्रेन के अपने हम मनसब से मुलाकात की पेशकश नामंजूर कर दी थी। यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने मोबाइल इंटरनेट खदमात में मुमकिन रुकावट के सिलसिले में तंबीह भी की थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इकतसादी सलाहकार कौंसिल के साथ मीटिंग की और मुल्क की मुआशी कायापलट और तवील मुद्दती तरक्याती तरजीहात का जायजा लिया। मरकज ने खुर्दनी तेल के पैकेट के मयारी साइज का सिलसिला शुरू किया है ताकि शफाफियत बढ़ाई जा सके और पैक करने के तौर तरीकों में इंसानियत को फरोग दिया जा सके। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाल के अपने हम मनसब शिशिर खनाल के साथ बातचीत की और कहा कि भारत और नेपाल अपनी खुली सरहद पर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए करीबी इश्तराक से काम करते हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीका के फौजी ठिकानों पर ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के बाद मगरबी एशिया में कशीदगी में इजाफा हो गया है। और हॉकी में भारतीय मर्दों की टीम ने जापान को हराकर 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों का एशिया कप जीत लिया है, जबकि भारतीय खवातीन टीम ने कांसे का तमगा हासिल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष पूरे कर रही है। उन महिला पत्रकारों को याद करना जरूरी है जिन्होंने पर्दे के पीछे नहीं बल्कि मोर्चे पर खड़े होकर कलम उठाया। रोशनी गुलाबी रोशनाई की आज का हमारा संपादकीय इसी यात्रा को सलाम करता है। आज से लगभग 200 साल पहले 30 मई 1826 को कलकत्ता के एक तंग गली में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में उदंत मार्तंड का पहला अंक प्रकाशित हुआ था। लेकिन इस सूर्योदय की कहानी तब तक अधूरी है जब तक हम उन महिलाओं के योगदान को स्वीकार नहीं करते जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज की बेड़ियों को तोड़कर कलम उठाया, पत्रिकाएं निकाली और हिंदी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। भारत की पहली महिला पत्रकार के रूप में हेमंत कुमारी देवी चौधरानी का नाम अंकित है। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र के कलम का चर्चा चारों ओर था, हेमंत कुमारी देवी उनकी समकालीन लेखिका और संपादिका के रूप में सक्रिय थीं। सन 1888 में उन्होंने सुगृहिणी पत्रिका का संपादन किया। सन 1909 में प्रयाग से स्त्री दर्पण पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसकी संपादिका थी रामेश्वरी देवी नेहरू और प्रबंधक थी कमला देवी नेहरू। ये महज एक पत्रिका नहीं थी, भारतीय नारी की सामूहिक चेतना का प्रथम मुद्रित स्वर था। इस पत्रिका ने बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, स्त्री शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों को अपने पैने कलम का निशाना बनाया। आधुनिक हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा का नाम यदि केवल कविता तक सीमित रखा जाए तो ये उनके साथ अन्याय होगा। फ्रांसीसी लेखिका सिमोन दी बोवार की प्रसिद्ध पुस्तक द सेकंड सेक्स आने से कई वर्ष पहले ही महादेवी वर्मा ने 1930 के दशक में चांद जैसी पत्रिकाओं के लिए महिलाओं के उत्पीड़न पर शक्तिशाली निबंधों की एक श्रृंखला लिखी थी। ये निबंध केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति नहीं थे, सामाजिक पत्रकारिता के उत्कृष्ट उदाहरण भी थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय चेतना की मशाल थामी। इस मशाल को थामने में महिला पत्रकारों की मुट्ठियां भी लगी थीं।

0: मित्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता झांसी की रानी आज भी रक्त में उबाल लाती है, उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपनी लेखनी से स्वाधीनता की अग्नि को भड़काया। इसी श्रृंखला में प्रताप, अभ्युदय और हिंदुस्तान जैसे पत्रों में महिला लेखिकाओं की सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद हिंदी पत्रकारिता के विस्तार के साथ महिला पत्रकारों की भूमिका भी बदली। प्रभा दत्त जैसी संपादक ने ये साबित किया कि हिंदी के बड़े समाचार पत्र का नेतृत्व एक महिला भी उतनी ही सक्षमता से कर सकती है या शायद बेहतर कर सकती है। तब से लेकर आज तक प्रखर पत्रकारिता के माध्यम से एक से बढ़कर एक महिला पत्रकार स्वयं को मुख्य धारा की पत्रकारिता में स्थापित करती आ रही हैं, जनता के हक की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। आज के डिजिटल युग में महिला पत्रकारों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। वेब पोर्टल, यूट्यूब पत्रकारिता, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर हजारों महिलाएं उन मुद्दों को उठा रही हैं, जिन्हें मुख्य धारा की पत्रकारिता अनदेखा करती है। ग्रामीण महिला पत्रकारिता में खबर लहरिया जैसे प्रयोग ये सिद्ध करते हैं कि नारी का कलम अब केवल शहर के संपादकीय कक्ष तक सीमित नहीं है। लेकिन श्रोताओं, ये संपादकीय केवल उपलब्धियों का गान नहीं है, ये एक ईमानदार आत्म परीक्षण भी है। 200 सालों के उत्सव के बीच संख्याओं का उपलब्ध आंकड़ा असहज करता है। क्या ये उन महिलाओं की विरासत के साथ न्याय है जिन्होंने लगभग 200 साल पहले समाज की परवाह किए बिना कलम उठाया था? आकाशवाणी, जिसकी आवाज ने दशकों से इस देश के घर घर को जोड़ा है, गांव की चौपाल से लेकर शहर के दफ्तर तक रेडियो सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक रिश्ता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस अनूठी यात्रा पर आज अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली।
1: मैं पिछले 40 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, ऑल इंडिया रेडियो में भी काफी आता रहा हूँ। जो पिछले 90 वर्षों का ब्रॉडकास्टिंग का इतिहास है, खास करके जो हिंदी, उर्दू और इलाकाई जबानें हैं उनमें ब्रॉडकास्टिंग का, उसका बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत देश की आज़ादी से पहले हो गई थी, देश के नवनिर्माण से लेकर के आज तक 80 बरस हो गए हैं देश की आज़ादी को भी, तो उसमें ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही कारगर योगदान है। न सिर्फ ये कि उसने लोगों को खबरें पहुंचाने का काम किया है, बल्कि उन्हें एजुकेट करने का और उनका एंटरटेनमेंट करने का भी काम किया है। ये एक बहुत बड़ा रोल है। और चूंकि एक जमाना था कि जब सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो ही हुआ करता था, 90 तक मैं समझता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए रहा है और उसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।
0: वरिष्ठ पत्रकार कुर्बान अली, उनके अनुभव, उनकी स्मृतियाँ और उनका विश्लेषण निश्चित ही हमें रेडियो की उस आत्मा तक ले जाएगा जो आज भी धड़क रही है। सच में जिस माध्यम ने आज़ादी की आवाज को सहेजा, देश की भावनाओं को बोली दी, वो आकाशवाणी कोई यंत्र नहीं, एक जीवंत परंपरा है।

साहित्य जब समाज से कट जाता है तो केवल शब्दों का खेल बन जाता है, लेकिन जब साहित्य की जड़ें जमीन से जुड़ी हों, तो वो एक नया अर्थ पा लेता है। आज की हमारी अगली प्रस्तुति में हम एक ऐसी ही जरूरी बातचीत लेकर आए हैं वरिष्ठ साहित्यकार पंकज बिष्ट के साथ। उनसे बातचीत कर रहे हैं प्राध्यापक और साहित्यकर्मी विशाल पांडे। तो सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साहित्य समाज और

0: सरोकार।
1: पंकज बिष्ट अपनी कहानियों और संपादन के लिए हिंदी साहित्य में जाने जाते हैं। उनकी कहानियां 15 जमा 25, बच्चे गवाह नहीं हो सकते, उपन्यास लेकिन दरवाजा, उस चिड़िया का नाम, पंख वाली नाव, गोलू और भोलू से हिंदी साहित्य हम सभी समृद्ध हुए। मैं जानना चाहूंगा पंकज जी कि लेखन की ओर आपका पहला झुकाव कब और कैसे उत्पन्न हुआ?
2: देखिए, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि मैं ये नहीं मान के चलता था कि मैं कहानीकार बनूंगा या उपन्यासकार बनूंगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं लिखने पढ़ने का काम चुनूं और करूं। बहुत संभव है कि अगर मैं पत्रकारिता वगैरह में नहीं आता तो हो सकता था मैं टीचिंग के काम में चला जाता, अध्यापन में जाता, तो जो कि उतना ही बहुत बड़ा होता। क्योंकि मैं लिखने के प्रति मेरा जो अनुराग था वो ज्यादा था, तो मैंने जब लिखना शुरू किया और वो थोड़ी इधर उधर उसके लिए कोशिश करी तो मुझको ये रास्ते ज्यादा बेहतर दिखाई देगा। तो उसमें ये हुआ कि जैसे मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद यहाँ एक जर्नलिज्म का स्कूल खुला तो उसमें एडमिशन लिया, उसमें मैंने पढ़ा। वो यहाँ के जर्नलिज्म के भारत में स्कूलों में शुरुआती था, वो बाद में खत्म हो गया। उससे मुझे मेरा एक्सपोजर हुआ और मैं डेली वगैरह में जाने लगा। और जैसे मैं हिंदी में लिखना नोवेल टाइम्स विशेषकर, उस दौरान के एडिटर उनके, इनका नाम अक्षय कुमार जैन था, वो भी जुड़े हुए थे, तो वहां मुझको एंट्री मिल गई। यानी कि मेरे लेख उन्होंने कहा, वो एडिटर वगैरह देख लेते थे। वह फिर वहाँ दो एडिटर रहते थे, उनमें एक महिला थी, रविवार संस्करण देखती थी, तो वो बेचारी भली भली औरत थी, तो वो मुझसे फिर धीरे धीरे वो जब काम करवाने लगी तो मैं अभी अच्छा काम कर, रिलेटिवली उनको ठीक लगने लगा। तो उससे मैं मुझे लिखने की और चीजों को समझने की और विषय कैसे चुनना चाहिए इस बात की मेरी समझ थोड़ी बनी, तो ये मुझको फायदा हुआ कि बाद में अपने कैरियर को उसी तरफ बढ़ाने में मुझे उसका मदद मिली।
1: पंकज जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपकी पहली कहानी 1967 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी। क्या आपको याद है कि पहली बार अपनी किसी रचना को प्रकाशित देखकर आपने क्या अनुभव किया था?
2: वो जो एक कहानी छपी उसका अनुभव जो है बड़ा बहुत मजेदार है। हुआ ये था कि मैंने उन दिनों एक लेखिका होती थी शची रानी गुड्डू, उन्होंने मेरे ख्याल से आर्ट वर्ट पर बहुत लिखा है, उनका बेटा वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में काम करता था, उससे कहीं मेरी मुलाकात हो गई, बातचीत। यंग था वो मेरी जैसा, तो मैं थोड़ा छोटा था, तो उसने बातचीत में कहा, तुम क्या करते हो? मैंने कहा लिखने के। उसने कहा, यार तुम लिखते थे हमारे यहाँ, दिखाओ तुम क्या कहानी लिखते हो, मैं देखूँ तुम्हारी कहानी। तो मैं डर के मारे में दिखा लिया, तो बड़ा मैगजीन है, कौन छापेगा, क्या करेगा। तो मैंने वो लिखा हुआ था उसको देखने को दे दी। उसने दी, उसने कहा तुम्हारी कहानी ठीक ठाक है, तुम ऐसा करो हमारे एडिटर को दो, मैं देता हूँ। तो उन दोनों एडिटर कोई सज्जन थे, अब वो याद नहीं आ रहा, पहले भटनागर जी हुआ करते थे, उनके बाद कोई थे, तो वो उन्होंने वो देखी और उन्होंने मुझे पत्र लिखा। जिंदगी में पहली बार आप हैं और कोई संपादक आपको पत्र लिख रहा है कि आप आगे मिलिए और मैं आपसे चर्चा करने। तो मैं बड़ा उत्साहित और रोमांचित कि भाई ये क्या कहने वाले। मैं वहां गया, उन्होंने कहानी की बड़ी तारीफ करी और उसके बाद मुझसे कहा कि देखिए आपकी कहानी इतनी अच्छी है कि हम अपने पत्रिका में हमारे पाठकों के जिससे ऊपर की है, तो इसलिए हम नहीं छापेंगे। तो मैं खैर कहानी लेकर वापस आ गया। सौभाग्य से वो एडिटर जो है बदल गए और वहां मनोहर श्याम जोशी आए। हाँ, उसने मुझसे कहा अब दे दो, फिर से देते हैं। तो मैंने उसको दिया, वही फॉरवर्ड कर देता था। तो फिर मुझे वहां से लेटर आया, मिलने आओ। यार फिर ये क्या तमाशा है। पहली बार तो मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे बुलाया और कहानी छापी नहीं और अब ये फिर कुछ ऐसे ही होगा। फिर मैं मरे मन से वहां पहुंचा, पहली बार मैं मनोहर श्याम जोशी से मिला। तो जोशी बोले, तुम यार ये क्या कहानी लिखते हो, थोड़ा सा और जो जिंदगी चीजें हैं उसको देखो, ये क्या रोमांटिक कहानी वानी लिख रहे हो तुम। अब मैं समझ गया कि कहानी छापेंगे नहीं। जाते हुए बोले, मैं ये तुम्हारी कहानी तो छाप रहा हूं, लेकिन तुम जो है ना और कुछ चीजें देखो। तो एक तरह से मेरे लिए प्रोत्साहन भी हुआ और कहानी छप भी गई। हाँ, मतलब एक चीज ये थी, उसमें एक फोटो भी छपता था, तो फोटो छपने से जो अतिरिक्त आनंद आया तो वो अतिरिक्त था।
1: मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लिए साहित्य केवल अभिव्यक्ति है या सामाजिक हस्तक्षेप का माध्यम भी है?
2: असल में मेरे लिए वो दोनों एक से जुड़े हुए हैं, समाज और रचनात्मकता। क्योंकि मैं व्यक्ति हूँ, एक मनुष्य हूँ, एक खास समाज में रहता हूँ, उसकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं जिस तरह से उसको देखता हूँ, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को, अपनी निकटता से, वो मेरी रचनाओं में आएंगी आएंगी, वो आती है। और अगर कोई चीज ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो लगता है

समाज को पिछड़े करने में या किसी एक सेक्शन के साथ अन्याय करने में अगर वो दिखाई दे रही है, तो ऐसा है कि एक लेखक के रूप में आप उद्वेलित होते हैं, क्योंकि आप अपने लेखन से आपको चीजों को जो देखने का आपकी जो दृष्टि होती है वो ये बनती है कि वो समझे कि आखिर ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ये खास तरह का व्यवहार कुछ के साथ हो रहा है कुछ के साथ नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको देख, तो लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं। तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं, तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा

0: ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये आपको लेखक के रूप में ये सब कुछ आप देखते हैं, तभी अगर आप उपन्यास लिखना चाहते हैं और समाज से जुड़ा हुआ लिखना चाहते हैं या आप वास्तविक समस्या को किसी को लेकर लिखना चाहते हैं तो आपको समाज को समझने का दृष्टि तो होनी चाहिए, बिना उसके तो आप नहीं कभी भी ढंग के उससे नहीं लिख पाएंगे। तो अब मैं अपनी रचनाओं में जो कुछ भी वो आ रहा है तो एक तरह से वो रचनात्मकता का हिस्सा है, वो अतिरिक्त तो कुछ नहीं।
1: पंकज जी, आपकी कहानियों को पढ़ते हुए लगता है कि उसमें आम आदमी की पीड़ा और व्यवस्था के प्रति एक तीखा असंतोष है, ये दृष्टि आपके भीतर कैसे विकसित होती है?
0: देखिए कारण वही है, जब मैंने चीजों को देखने का और जो स्थितियां हैं उनको समझने का कि आखिर क्यों जो इस असमानता है, जो अन्याय है, जो कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव है वो क्यों और है, तो वो क्यों नहीं बदल रहा है अब तक, क्यों इसमें कोई प्रयत्न नहीं दिखाई दे रहा, वो सारी चीजें मुझे प्रेरित करते रहे, देखते रहे। तो मैंने कोशिश करी कि अब एक तरह से चूंकि मैं जिन स्थितियों में शुरुआत में कुछ दिनों रहने के हुआ पड़ा हमको, तो जो चीजों का ना होना, आपके पास पैसे की कमी होना, आपको एक बेहतर स्थिति में नहीं रहने देने का ना, जो अभाव जिसको कहते हैं, अभाव की जो स्थिति है आपने सहा है तो आप उससे औरों के साथ आइडेंटिफाई करने में आप मदद मिली, तो मतलब एक लेखक के रूप और एक लेखक के रूप में मेरे ख्याल से एक रचनाकार के रूप में या कलाकार के रूप में ये भी होता है कि जो उसकी संवेदनशीलता है वो उसकी अपनी जो अनुभव है उनके परे भी जाते, वो औरों से भी सीखते हैं, औरों को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भी मैंने जिस तरह से मैं जिंदगी को देखा है, जो अभिव्यक्त करने की कोशिश करी है, उसमें यही तरीका हो यही है। जो
1: पंकज जी, आपकी रचनाओं में संवेदना और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं, क्या यह आपके लेखन की सचेत रणनीति है?
0: ऐसा कुछ नहीं है, होता क्या है कि आप चीजों को देखते हैं, जब आप किसी मान लीजिए कोई खास स्थिति को देख रहे हो, कोई अपंग है मान लीजिए, वो नहीं चल सक रहा है, उसको चलने की मदद नहीं मिल रही है और लोग उसकी मदद नहीं कर, ये जब आप देख रहे हैं तो इससे आप जो अर्थ निकाल रहे हैं और जो जिस तरह से उसको आप अभिव्यक्त करना चाहते हैं या जिस तरह से आप उसको बदलना चाहते हैं, ये सारी प्रतिक्रियाओं को आप एक लेखक के रूप में लिखना चाहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी दृष्टि संवेदनशील है, आप अगर मानवीय हैं, तो आपको जो भी तकलीफ दूसरे आदमी की होगी आप उससे जरूर अपने को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैसे मेरे ख्याल से लेखक होना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी हो सकती है, मतलब एक आदमी होने के कारण, ह्यूमन बीइंग होने के कारण हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम जो भी हमसे कमजोर हो, जिसको जरूरत हो, उसकी मदद करें।
1: पंकज जी, आज के समय में कहानी और उपन्यास के स्वरूप में आप क्या परिवर्तन महसूस करते हैं इस बदलते हुए समय में?
0: देखिए हो क्या रहा है कि कहानी का जो महत्व है वो कहानी चूंकि बहुत छोटे दायरे में चीजों को देखने की कोशिश करती है, तो मेरे ख्याल से ये कहानी की जगह टेलीविजन, रेडियो, जो और जो एंटरटेनमेंट के माध्यम है उन्होंने ले लिए है। अब जो माध्यम बचता है वो बड़े नरेटिव में बचता है, वो उपन्यास है। अब उपन्यास इसलिए शायद मेरे ख्याल से कहानियों में अब उतना लेखन नहीं हो नजर आता है मुझको, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन एक और बात भी है, जो श्रव्य या दृश्य माध्यम है उनकी अपनी सीमा है, उनमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और वो जो कह रहा है वो आप पे यथावत, क्योंकि वो दृश्य आपके सामने एक तरह से साकार है तो वो पूरी तरह आप पे छाए रहते, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी वो बना रहा है उसको, या एक्टर मेरा मतलब जो एक्ट कर। लेकिन जो रचनात्मकता जो लिखना है उसमें यह है कि लेखक जो लेखन के साथ यह है कि आपको जो लिखने में कहा जा रहा है उसको अपने दिमाग में, अपने अपनी चेतना में, अपनी संवेदना में एकाकार करना है, उससे तालमेल बैठाना है और उसको उस तरह से दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो वो जो है जो इन्वॉल्वमेंट का लेवल है, सेंसिटिविटी का लेवल है, वो डिफरेंट है, तो वो ज्यादा सक्रिय है, वो एक तरफा नहीं है। ये इसका वो महत्व तो ये है।
1: बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आकाशवाणी का आपका सफर रहा है पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आकाशवाणी का धन्यवाद।
2: पंकज बिष्ट और विशाल पांडे का ये संवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम जो पढ़ते हैं, जो लिखते हैं, क्या वो उस जिंदगी से जुड़ा है जो हमारे आसपास सांस ले रही है।

0: दौर में साहित्य को एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और ये काम आकाशवाणी और साहित्य अकादमी जैसे संस्थान लगातार करते चले आ रहे हैं। हमारी अगली प्रस्तुति सृजन की अगली पंक्ति में सुनते हैं विकास दवे, निदेशक मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से चंद्रशेखर शर्मा की बातचीत।
1: हमारे साथ हैं लब्ध प्रतिष्ठ बाल साहित्यकार मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर विकास दुबे सर। सर
2: आज बहुत अच्छा लग रहा है और आकाशवाणी के इस पटल पर विशेष करके मुझे इस बात को लेकर के बड़ा गर्व की अनुभूति हो रही है कि चूंकि आकाशवाणी और साहित्य समाज ये एक ही परिवार के दो हिस्से हैं।
1: सर रेडियो को हम बोलते हैं एक दृष्टिहीन कला, ब्लाइंड आर्ट, और अज्ञेय जी ने कहा है कि रेडियो ने साहित्य में श्रव्य बिंबों की नई दुनिया रची है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या विचार श्रृंखला इस बारे में कहती है।
2: अज्ञेय और मुक्तिबोध दोनों को हमको स्मरण करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
2: और लगभग दोनों ने समान धर्मी विचार व्यक्त किए थे, विशेष करके आकाशवाणी के इस माध्यम को लेकर के। उससे पहले तक रंग कर्म और नाटक विधा ये चूंकि दृश्य विधा के अंतर्गत आया करते थे। जब आकाशवाणी का प्रणयन हुआ उसके पश्चात रेडियो रूपक जैसे शब्द समाज ने सुने
1: जी,
2: और रेडियो रूपक ने दरअसल साहित्य क्षेत्र में इन मान्यताओं को एक प्रकार से आश्वस्ति दी कि यदि आप आंखों के सामने दृश्य उपस्थित न भी करें तो भी केवल स्वरों के उतार चढ़ाव से, स्वरों का जो पूरा भाव भंगिमाएं अभिव्यक्त करने का जो सौष्ठव है उसके माध्यम से भी एक पूरे के पूरे नाट्य विधा को आप स्थापित कर सकते हैं।
1: शब्द चित्र
2: अद्भुत, वो शब्द चित्र के ही माध्यम से एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात यह कि आकाशवाणी ने जिस ढंग से भाषा को अपने साथ सहेजने का प्रयत्न किया, भारतीय समाज में जो आक्रांताओं का जो युग था उस औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आने के लिए और विशेष करके हम सब पर पड़ा हुआ जो भाषाई प्रभाव था किसी शब्द की, वाक्य विन्यास की, व्याकरणगत वाक्य विन्यास की, उसमें निश्चित तौर पर एक वैक्सीन का काम किया है आकाशवाणी ने।
1: साहित्यिक शुचिता बनाए रखते हुए मर्यादित और सुगम भाषा के माध्यम से साहित्य को रेडियो ने जन जन तक पहुंचाया है। इस संदर्भ में सर विष्णु प्रभाकर जी को हम याद करते हुए एक बात कहना चाहेंगे कि रेडियो ने साहित्य में संवादात्मक रूप को निखारा है। हम इस संदर्भ में सर आपके विचार जानना।
2: स्वाभाविक रूप से साहित्य को जन जन तक पहुंचाने का काम आकाशवाणी ने सर्वाधिक किया ही है
1: जी।
2: और मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ पर साहित्य क्षेत्र में दो शब्द प्रचलन में आते हैं, लोक और शास्त्र
1: जी,
2: तो शास्त्रीय अवधारणाओं को लोक तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आकाशवाणी ने किया है
1: जी।
2: और विशेष करके ये जो साहित्य की जो भिन्न भिन्न विधाएं हैं जिनसे सामान्य जन को परिचित कराने का काम किया
1: जी।
2: इसके साथ साथ मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी परिचय दिलाने का काम आकाशवाणी ने बड़ी मात्रा में किया है। तो ये जो साहित्य जगत को लोक से जोड़ना, लोक को साहित्य से जोड़ना और उन सबके बीच में सेतु का काम करना, और ये सब करते हुए व्याकरण भी सिखा रही है आकाशवाणी, भाव पक्ष भी समझा रही है। आप देखिए, चाहे हम लोगों को कई बार लगता होगा कि वे जब सी रामचंद्र की बात करते हैं, हमारे जो उद्घोषक होते हैं, वो जब कहते हैं कि भरत व्यास ने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया है, इंदिवर ने इस गीत में ऐसा ऐसा हुआ, या किशोर दा ने गाते समय इस शब्द को इस तरह से गाने की कोशिश की, लेकिन फिर गीतकार वहां उपस्थित थे, उन्होंने कहा नहीं, इस शब्द का उच्चारण भोजपुरी में ऐसा होता है, अवधी में ऐसा होता है, इसलिए आपको इस ढंग से करना है। तो ये जो सिखाने का क्रम था, ये मुझे लगता है कि आकाशवाणी एक प्रशिक्षक की भूमिका रही है समाज में साहित्य और व्याकरण और भाषा की दृष्टि से
1: जी। अमृतलाल नागर जी का सर एक कोटेशन है कि रेडियो जनमानस तक साहित्य की पहुंच का सबसे सशक्त माध्यम है। क्या आप मानते हैं सर कि रेडियो ने साहित्य को लोकधारा से जोड़ा?
2: तकनीकी रूप से इस बात को हम इस दृष्टि से भी स्वीकार कर सकते हैं कि रेडियो अभिजात्य वर्ग की पहचान तो था ही
1: जी।
2: आज यदि हम अनुभव करते हैं कि आज हमारे ड्राइंग रूम में बड़े बड़े थिएटर्स बना करके लोग बैठे हैं और एक दीवार के आकार के टेलीविजन सेट लगे हुए हैं, कमरे के चारों कोने में स्पीकर लगे हुए हैं, उस स्थिति से निकलने वाले लोगों को शायद ये कल्पना भी नहीं होगी कि आकाशवाणी या रेडियो को सुनने के लिए एक जमाने में लाइसेंस लेना पड़ता था। मैंने आकाशवाणी के 50 वर्ष जब हुए थे तब एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि आकाशवाणी की भले ही वह यात्रा इतिहास रही हो, लेकिन आकाशवाणी का आज हमको क्या दिखाता है? आज हमको दिखाता है कि खेत में हल जोतता हुआ किसान जो है, वह दोनों बेलों की घंटियों की आवाज के बीच में, वो जो दोनों बेलों के कंधे पर जुआ रखा है, उस जुए के सेंटर में रस्सी से बांध करके एक रेडियो लटका करके रखता है, और खेत में अनाज बोते हुए भी, बीज बोते हुए भी, वो आकाशवाणी के माध्यम से सुरीले गीत सुन रहा है, देश भर की खबरों से अपने आप को जोड़ रहा है। और इतना ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से जानकारियों का प्रदाय का काम आकाशवाणी ने किया है, वो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल

0: अंत्योदय की पराकाष्ठा मानता हूं मैं इसको। कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा इतने सारे जो शोध कार्य संपन्न होते हैं
1: जी
0: उन्हें एक अनपढ़ किसान तक पहुंचाने का काम भी अगर कोई कर पाता है तो वो निश्चित तौर पर आकाशवाणी कर रही है।
1: हम आपसे सर जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के मंच ने किस प्रकार से साहित्यकारों की पहचान और लोकप्रियता में श्रीवृद्धि करने में अपना योगदान दिया है।
0: सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, महादेवी वर्मा जी हों
1: जी
0: या सुभद्रा कुमारी चौहान हों,
1: जी
0: हम देखते हैं कि इन सब रचनाकारों ने जिस ढंग से आकाशवाणी को अत्यंत श्रद्धा के साथ अपनाया
1: जी
0: और
1: जी
0: उनकी उन कालजयी रचनाओं को अगर जनसामान्य ने कंठस्थ किया, मुखाग्र किया,
1: जी
0: तो उसमें निश्चित तौर पर आकाशवाणी का एक बड़ा हाथ था। अमिताभ बच्चन जी चूंकि सदी के महानायक कहलाते हैं और उन्होंने जब पहली बार मधुशाला को अपने
1: जी
0: स्वर देकर
1: स्वर
0: के और
1: देकर
0: एक
1: मैंने
0: कंपनी के माध्यम से एक एल्बम तैयार किया था,
1: जी
0: तब एक पत्रकार ने उनसे पूछा था तो उन्होंने यही कहा था कि भाई इस काम को आकाशवाणी बहुत पहले कर चुकी है और विशेष करके इसमें मैं आंचलिक साहित्यकारों को पहचान
1: जी
0: दिलाने के
1: जी
0: काम में
1: उनके
0: आकाशवाणी
1: लिए
0: का
1: एक
0: जो
1: बड़ा
0: अवदान है
1: प्लेटफॉर्म मिला है सर।
0: वो तो अद्भुत है।
1: इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी ने साहित्य की नई विधाओं को भी जन्म दिया है,
0: जी
1: जैसे रेडियो रूपक हुआ, रेडियो नाटक हुआ, और आकाशवाणी का एक गर्विला सफर रहा है जिसमें भारत भूषण अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और पीएल देशपांडे जैसे ये साहित्यकारों ने काम किया है यहाँ पर और इन नई विधाओं के उन्नयन में अपना योगदान दिया है।
0: चाहे वो कृषि जगत में नंदा जी भेरा जी के माध्यम से
1: जी
0: कृष्णकांत जी दुबे, नरहरि पटेल जी,
1: जी
0: स्वतंत्र कुमार जी ओझा को मैं इस समय स्मरण करना
1: स्वतंत्र कुमार
0: चाहता
1: जी
0: हूँ,
1: को जी
0: ये एक पूरी की पूरी जो पीढ़ियां थी उन पीढ़ियों ने अपने आप को एक प्रकार से होम किया।
1: जी
0: उन्होंने अपने जीवन का कण कण और क्षण क्षण लगा करके इस आकाशवाणी की विधा को इतना उदात्त स्तर पर पहुंचाया कि लगता है कि सचमुच इन लोगों ने एक तप की तरह इस काम को किया था। और जिन नई विधाओं के संदर्भ में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आकाशवाणी के माध्यम से नाटक से इतर भी अगर हम चलें तो जिसे कथा कथन की शैली को विकसित
1: जी
0: करना,
1: जी
0: कहानी लेखन भले ही साहित्य का विषय होगा लेकिन कथा कथन साहित्य का विषय नहीं है, वो एक प्रकार से कला का विषय
1: कला
0: है।
1: का विषय
0: लेकिन साहित्य और कला को सेतु बना करके उन्होंने जिस ढंग से कहानियां पढ़ना प्रारंभ की, मैं इस दिशा में कई बार इस बात का उल्लेख भी करता हूं कि सुबह का जो चिंतन आता है,
1: जी
0: चिंतन का प्रत्येक एपिसोड जो होता है वो अपने आप में ललित निबंध होता है एक प्रकार का,
1: जी
0: और इस ललित निबंध को सुनना यानी केवल वो कानों को सुख देता है, मानस को सुख देता है ऐसा नहीं, बिल्कुल आत्मा भी उसमें तृप्त हो जाती है।
1: जी
0: मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इसको लेकर के आकाशवाणी के इस अवदान को लेकर के जितना कहा जाए उतना कम होगा। आकाशवाणी के जो संग्रहालय है, आर्काइव्स है,
1: जी
0: उनमें इतनी अभूतपूर्व सामग्रियां हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी युग में लता जी मुंबई के आकाशवाणी स्टूडियो में बैठ करके केवल अभ्यास कर रही थी और मशीन पर बैठे हुए उस समय के तकनीशियन ने रिकॉर्ड कर लिया उनको, केवल अभ्यास की वाणियों को या आपस की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया और वो सब के सब आज, चाहे वो शुभा मुद्गल हों, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया जी हों, चाहे
1: जी
0: छन्नू मिश्रा जी हों, उन सब की सामान्य बातचीत जो कि ऑफिशियली आकाशवाणी पर कभी प्रसारित नहीं हुई
1: जी
0: लेकिन वो सब चीजें आज भी हमारे पास उस मैग्नेटिक टेप पर रिकॉर्डेड हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि वर्तमान में प्रसार भारती ने अपने ऐसे सारे संग्रहालयों को एक प्रकार से, चूंकि जो क्लाउड है वो क्लाउड को मैं आधुनिक युग का कालपात्र ही मानता
1: बिल्कुल
0: हूं,
1: बिल्कुल
0: वो अब अक्षय भंडार हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके लिए जो ओपन फॉर ऑल कर दिया है, मैं तो कई बार उस आर्काइव पर जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घंटों उससे बाहर ना आऊं, तो
1: जी
0: मुझे लगता है कि उसका लाभ हम सब लोगों को लेना चाहिए। और विशेष करके साहित्य क्षेत्र के साहित्यकारों से मैं आग्रह करूंगा, केवल नवोदित पीढ़ी से नहीं पुरानी पीढ़ी के साहित्यकारों से भी, कि वे कभी माखन दादा को, वीरेंद्र मिश्र जी को, महादेवी वर्मा जी को, इन सबको उनके मूल स्वर में
1: जी
0: सुने
1: सर
0: तो
1: बिल्कुल
0: हमारे ध्यान में आता है कि उनकी सोच कितनी उदात्त थी, कितने उदार हृदय से वो साहित्य की समीक्षाएं किया करते थे। आज जिस ढंग से एक दूसरे को प्रशंसित करने का काम हम लोग कर रहे हैं
1: जी
0: उस युग में आकाशवाणी हमारे लिए एक अच्छा प्रशिक्षक इस मामले में भी हो सकता है।
2: सृजन की अगली पंक्ति मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निदेशक विकास दवे से चंद्रशेखर शर्मा की ये बातचीत आपने अभी सुनी। सौजन्य आकाशवाणी भोपाल। और अब स्मृति नमन। वो जो चले गए लेकिन अपने शब्दों से, अपनी कृतियों से हमेशा के लिए जी गए। आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही तीन महान विभूतियों को, जन कवि नागार्जुन, जिनकी कविता धरती की तरह थी, ठोस, उर्वर और सच्ची, जो हाशिए के इंसान की आवाज बने। काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश के राष्ट्र कवि भी हैं, जिनकी

विद्रोही कविता ने एक पूरी पीढ़ी को जगाया। मुद्रा राक्षस, हिंदी के वो फक्कड़ रचनाकार जिनके कलम ने कभी सत्ता से समझौता नहीं किया। नाटक, उपन्यास, आलोचना, हर विधा में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी। नागार्जुन, काजी नजरुल इस्लाम और मुद्रा राक्षस की ये त्रयी हमें याद दिलाती है कि साहित्यकार मरता नहीं, वो अपनी रचनाओं में बार बार जन्म लेता है। इस त्रयी को साहित्य भारती का विनम्र स्मृति नमन। इसी के साथ साहित्य भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए शब्दों के साथ, नई संवेदनाओं के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सोचते रहिए। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनते हैं ऋषिकेश गांगुर्डे जी का शास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ वोकल रिसाइटल बाय ऋषिकेश गांगुर्डे।
0: पुणे के एक संगीत प्रेमी परिवार में जन्मे ऋषिकेश जी को 5 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई। इसके पश्चात उन्होंने डॉ विकास कशाळकर और पंडित यशवंत बुआ जोशी से 8 वर्षों तक ग्वालियर घराने के गायकी को बारीकियों से सीखा। इसके बाद ऋषिकेश जी ने आईटीसी संगीत रिसर्च अकादमी की प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त की और कलकत्ता में ग्वालियर, जयपुर, आगरा घराने के दिग्गज पंडित उल्लास कशाळकर के सान्निध्य में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत 6 वर्षों तक गहन प्रशिक्षण लिया। उन्हें बनारस घराने की विदुषी गिरिजा देवी जी से ठुमरी, दादरा और कजरी जैसे उपशास्त्रीय रूपों को सीखने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
1: बॉर्न इन टू अ म्यूजिक लविंग फैमिली इन पुणे, ऋषिकेश वॉज इनिशिएटेड इन टू वोकल म्यूजिक एट द टेंडर एज ऑफ 5 बाय हिज फादर श्री पुरुषोत्तम गांगुर्डे। He later received extensive training for 8 years from Dr. Vikas Kashalkar and Pandit Yashwant Bua Joshi, learning the intricacies of the Gwalior Gharana. Thereafter, Rishikesh received the prestigious ITC Sangeet Research Academy scholarship, coming under the tutelage of the stalwart Pandit Ullas Kashalkar. For 6 years, he underwent intense training in the pure Gharana Gayaki of the Gwalior, Jaipur and Agra traditions. He was also fortunate to learn semi-classical forms like Thumri and Dadra from the legendary Vidushi Girija Devi of the Banaras Gharana.
0: ऋषिकेश गांगुर्डे आकाशवाणी के ए श्रेणी के गायक कलाकार हैं। उनकी गायकी में संगीत का सौंदर्य, भव्यता और माधुर्य झलकता है जो सीधे श्रोताओं के मन को छू लेता है और यही उनके गायकी की विशेषता है। गायन के साथ साथ वे एक कुशल तबला वादक भी है और उन्होंने कई कार्यक्रमों में अपने गुरु पंडित उल्लास कशाळकर के साथ तबले पर संगत की है। वर्तमान में वे भारतीय विद्यापीठ पुणे के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है।
1: ऋषिकेश गांगुर्डे इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड इज स्टेडली कार्विंग अ निश फॉर हिमसेल्फ एज अ घरानेदार वोकलिस्ट who tries to give expression to the beauty, grandeur and sweetness of music so as to touch the human heart, and this is the hallmark of his singing. Beyond his vocal prowess, he is an accomplished tabla player and has even accompanied his guru Pandit Ullas Kashaळkar in various concerts. Currently, he serves as an assistant professor in the School of Performing Arts at Bharati Vidyapeeth Pune.
0: आज के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे जी को तबले पर संगत कर रहे हैं आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं मकरंद खरवंडीकर। अपने गायन का आरंभ वे कर रहे हैं राग बिहागड़ा से। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल है प्यारी पग

0: ये था राग बिहागड़ा।
1: दैट वॉज राग बिहागड़ा।
0: ऋषिकेश गांगुड़े अपने गायन का समापन राग बागेश्री से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल तिलवाड़ा ताल में निबद्ध है, जिसके बोल है लाल मनावे। गायन का समापन वे तीन ताल की द्रुत बंदिश पहरवा घर आओ से करेंगे।
1: नेक्स्ट ऋषिकेश गांगुड़े विल प्रेजेंट राग बागेश्री। द विलंबित ख्याल इज सेट टू तिलवाड़ा ताल। ही कंक्लूड्स द रागा विथ द्रुत कंपोजिशन इन तीन ताल।

0: राग बागेश्री अभी आपने सुना।
1: दैट वॉज राग बागेश्री।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप ऋषिकेश गांगुलडे जी का शास्त्रीय गायन सुन रहे थे। उन्हें तबले पर श्री आशय कुलकर्णी और हारमोनियम पर श्री मकरंद खरवंडेकर जी ने संगत की। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी पुणे केंद्र के स्टूडियो में किया गया और यह कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to a classical vocal recital by Rishikesh Gangurde in the National Program of Music. He was accompanied on the tabla by Ashay Kulkarni and on the harmonium by Makaranda Kharvandikar. This program was recorded at the studios of Akashwani Pune, and this program was broadcast from Akashwani Delhi.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका।